0: कद्र करेगा।
1: अभी आपने सुना ये अनमोल विचार, और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये मातृ वंदना।

संवेद स्वर में अभी आपने सुनाई मातृवंदना, और अब श्रोताओं लीजिए सुनिए अनूप जलोटा की आवाज में ये भजन।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 5:55 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है केले में कीट व्याधि नियंत्रण। केले को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों में आभासी तना भेदक यानी सूडोस्टेम बोरर का सबसे प्रमुख स्थान है। ये कीड़ा केले के तनों को भीतर ही भीतर खाकर नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रकोप से केले का पेड़ सूख कर मर जाता है। सूडोस्टेम बोरर के बाद केले के पेड़ में लगने वाला दूसरा प्रमुख कीड़ा है पत्ती व फलभृंग। इस कीड़े के वयस्क केले की पत्तियों व फलों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने वाला एक अन्य कीड़ा जड़ घुन या रूट स्टॉक वीविल है, जो कि केले के जड़ों को खाकर हानि पहुंचाता है। इस कीड़े के तीव्र प्रकोप से कभी कभी पूरा पेड़ सूख कर गिर जाता है। किसान भाइयों, इन सभी प्रमुख कीड़ों के अतिरिक्त केले में माहू का भी काफी प्रकोप पाया जाता है। माहू के वयस्क व शिशु दोनों ही अवस्थाएं पत्तियों व पुष्पक्रम आदि का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं।

0: किसान भाइयों, केले के बागानों में कीड़ों के प्रकोप को कम करने के लिए कुछ एक सावधानियों का बरतना बहुत ही ज़रूरी है। जड़ घुन के प्रकोप को कम करने के लिए बागान में स्वच्छता रखें। वैसे भी कीड़े एवं बीमारियों के नियंत्रण के लिए बागान में स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है। बागान में ऐसा कोई कूड़ा करकट आदि का ढेर ना हो जिन पर की जड़ घुन की अवस्थाएँ पलकर पनपें। पुराने राइजोम और कटे हुए तनों को मिट्टी की एक परत से ढक दें जिससे कि उन भागों पर जड़ों में लगने वाले घुन ना पनप सके। किसान भाइयों, केले की खेती करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतःभूस्तरी यानी सकर्स आप जिन खेतों से लाते हैं वो खेत बीमारियों और कीड़ों से मुक्त होने चाहिए। खासतौर पर सकर्स उन खेतों से लाए जाएं जो कि घुन से मुक्त हों। केले के सकर्स को लगाने से पहले आप उनका उपचार भी दवाओं से कर सकते हैं। केले में लगभग 64 बीमारियां लगती हैं। कुछ बीमारियां पौधों में लगती हैं तो कुछ फलों में। केले की सबसे प्रमुख बीमारी है बंची टॉप, जो कि विषाणुओं से फैलती है। इस बीमारी में पौधे के बीच की पत्ती छोटी होकर सीधी खड़ी हो जाती है। किसान भाइयों, इस तरह के पौधों को उखाड़ कर जला देना चाहिए। केले का दूसरा प्रमुख रोग है पनामा मुरझान। इस रोग में पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं और बाद में पूरा पौधा ही पीला हो जाता है। पत्ती धब्बा रोग भी केले की एक बीमारी है जो कि सिर्फ पत्तियों में लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो कि बाद में बढ़कर पीली धारियों में बदल जाते हैं। किसान भाइयों, विषाणुओं से फैलने वाली एक अन्य बीमारी है चित्तल। ये बीमारी भी केवल पत्तियों में लगती है। इसमें सफ़ेद रंगहीन धारियां बन जाती हैं तथा शिराएं मोटी हो जाती हैं। केले की एक अन्य बीमारी है आभासी तना सड़न, जिसमें पौधा कॉलर भाग से सड़कर गिर जाता है। साथियों, इन बीमारियों से बचने के लिए समय समय पर आप अपने केले के बागान की निगरानी करते रहें और जो लक्षण हमें बताएं उन लक्षणों को देखते ही पौधरक्षा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार दवाओं का प्रयोग करें।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स। विषय था केले में कीट व्याधि नियंत्रण।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रानी लक्ष्मी आज दिन में 11 बजे शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानीचंगा आज दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान कल सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अब सुनिए कल के यात्राओं के बारे में। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल यानी बृहस्पतिवार 25 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा।

0: तथा इस जलयान की रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा होगी कल ही दोपहर 12 बजे। एमवी रानी लक्ष्मी कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी जॉली बॉय कल सुबह 6:15 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानी चंगा कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोजा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप की यात्रा पर छूटेगा और ये जलयान अगले दिन यानी शुक्रवार 26 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छोड़कर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शुक्रवार 26 तारीख को सुबह 7 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान अगले दिन यानी शनिवार 27 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छोड़कर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरम्भ करेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी भारत सीमा कल 25 तारीख को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा ये जलयान कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। एमवी कालीघाट रविवार 28 तारीख को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार जाएगा तथा ये जलयान सोमवार 29 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:15 हुए हैं। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार श्रोताओं, आज इंद्रधनुष के रंगों में हमने चुना है प्रकृति का एक मनमोहक रूप बादल। कभी ये धरती की प्यास बुझाते हैं, कभी प्रेम का संदेश लेकर आते हैं और कभी मन में नई उमंग जगा देते हैं। बादल हमें सिखाते हैं कि ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी दूसरों के लिए बरसना ही जीवन की सार्थकता है। जब बादल गरजते हैं और बरसते हैं तो प्रकृति का रूप ही बदल जाता है। तपती धरती को राहत मिलती है और मन में एक नई ताजगी भर जाती है। वर्षा की बूंदों के साथ बादलों का ये संगीत हर किसी को अच्छा लगता है।

बादल केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि प्रेम की भावनाओं को भी गहराई देते हैं। जब मौसम सुहाना हो, हवाएं मस्ती में बह रही हो और बादल आसमान में छाए हो, तब दिल भी किसी के प्यार में दीवाना हो उठता है।

0: श्रोताओं, बादल हमेशा गतिशील रहते हैं, वे रुकना नहीं जानते। एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हुए वे जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ठहराव नहीं गति ही जीवन है। बादल की तरह चलते रहो, मंजिलें खुद रास्ता बना देंगी।
1: बादल

0: तो श्रोताओं, बादल उनकी छांव, उनकी मस्ती, उनकी प्रेम भरी अदाओं और जीवन संदेशों से सजा आज का कार्यक्रम इंद्रधनुष यहीं समाप्त होता है। आशा है कि बादलों के इस संगीतमय सफर ने आपके मन को भी ताजगी और आनंद से भर दिया होगा। बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी बरसाई हुई खुशियाँ लंबे समय तक याद रहती हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष। विषय था बादल और प्रस्तुत कर रही थी देव की। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 279वीं कड़ी। गायक कलाकार उत्तरा केलकर और श्रीकांत पारगांवकर।

सीता की खोज में जाने को उद्यत पवन पुत्र हनुमान ने बार बार श्रीराम का नामस्मरण करके सागर के समीप स्थित पर्वत पर से जो छलांग लगाई तो पर्वत पाताल में जा धंसा। प्रभु के अमोघ वाणों की भांति उन्हें लंका की ओर बढ़ते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाही और इसके लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। मार्ग रोक कर सुरसा ने अपना विकराल मुंह खोल दिया और बोली, बहुत दिनों बाद देवताओं ने मेरा आहार भेजा है। हनुमान बोले, हे माता, मैं श्रीराम का कार्य करके लौटकर स्वयं तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा, अभी मुझे जाने दो।

किंतु उनकी विनती की अनसुनी कर सुरसा ने चार योजन में अपना मुंह खोल दिया। पवन पुत्र ने अपना आकार 8 योजन कर लिया। सुरसा ने 16 योजन में मुंह खोला तो हनुमान 32 के हो गए। उत्तरोत्तर बढ़ता सुरसा का मुंह 100 योजन का हुआ कि पवन पुत्र अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए और नतमस्तक होकर सुरसा से विदा मांगी। सुरसा ने पवन पुत्र के बलबुद्धि की था पाली थी। आशीष देकर उसने कहा, श्री राम का काम तुम अवश्य पूरा करोगे।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान के 279वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे उत्तरा केलकर और श्रीकांत पारगांवकर तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए वतन के गीत।

श्रोताओं, संवेद स्वर में अभी आप सुन रहे थे वतन के गीत। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:50 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण।

पहले सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही पलों के बाद यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जनसूचनाएं। 7:15 पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी। ठीक उसी समय FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:23 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप श्रीमती आशा गुप्ता की स्वरचित कविता पाठ सुनेंगे। उसके पश्चात कुछ फिल्मी गीत भी प्रसारित की जाएगी। 8:30 पर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 39वें स्थापना दिवस पर कल 23 जून 2026 को आयोजित कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग रेडियो रिपोर्ट आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने सुबह 9 बजे आप सुन सकते हैं। 9:30 पर शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में आप उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का गायन सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम गीत गाता चल सुबह 10 बजे आप सुन सकते हैं। दिन में 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित की जाएगी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक दिन में 11:30 पर आप सुन सकेंगे। दोपहर 12 बजे तेलुगु में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी। साथ ही कुछ फिल्मी गीतों का आनंद भी आप ले पाएंगे। 12:30 पर मलयालम में सुनिएगा कार्यक्रम हरिता वाणी, जिसके तहत आप डॉक्टर ए मोहनदास की वार्ता सुन पाएंगे। महफिले कव्वाली कार्यक्रम में जाहिद नजा कव्वाल को सुनिएगा 1:10 पर। 1:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्त

सकती होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर स्थानीय सभा जारी रहेगा, जिसमें आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स। 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा, यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा सेंट जॉन द बैप्टिज्म हरमिंदर वे के विशेष दिन पर कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 4:30 पर प्रसारित की जाएगी प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण आपको दिया जाएगा 4:40 पर। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम बहारों की शाम 4:45 पर आप सुन सकते हैं। शाम 5 बजे तमिल में एक ही संगीतकार का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन पाएंगे। 5:30 पर बांग्ला में आधुनिक गीतों का आनंद लीजिएगा। कृषि जगत कार्यक्रम शाम 6 बजे, जिसमें आप श्री जगदीश हल्दर से की गई बातचीत सुनेंगे। विषय होगा खेत बचाओ अभियान। दर्द भरे नगमे कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं दी जाएगी 7:15 पर। 7:20 पर कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे युववाणी 7:30 पर, जिसके तहत आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 8 बजे। 8:30 पर रोजगार समाचार, उसके बाद गौरवगान प्रसारित की जाएगी। रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सरगम। इन कार्यक्रमों के अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कतरामीराय धन्यवादं दत्तवान्, व्रणितानां कृते शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदानाय च प्रशंसितवान्। द्वौ नेतारौ स्वनागरिकाणां कल्याणं सुरक्षाञ्च सुनिश्चेतुं स्वप्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। भारतस्य खनिज मन्त्रालयेन 56 महत्वपूर्णानां सामरिक खनिज खण्डानां अथ 11 अन्वेषण अनुज्ञापत्र खण्डानां च सफल सघोष विक्रयणेन सह क्रिटिकल मिनरल मिशन इति दुर्लभ खनिज कार्यक्रमस्य महती गति प्राप्ता अस्ति। मन्त्रालयेन सघोष विक्रयणस्य 7 खण्डस्य अन्तर्गतं 10 महत्वपूर्ण सामरिक खनिज खण्डाः सफलतया सघोष विक्रयणं कृताः। भारतेन पाकिस्तानाक्रमित जम्मूकश्मीरस्य स्थितिविषये कृतटिप्पणी सम्बद्धं पाकिस्तानस्य रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफ इत्यस्य घोरालोचना कृता। विदेशमन्त्रालयेन कथितं यत् एताः टिप्पण्यः प्रतिवेशिदेशस्य स्वस्य असफलताम् अवच्छादनाय स्वस्य मानव अधिकारस्य उल्लंघनात् ध्यानं दूरीकर्तुं क्रियमाणाः निराशजनकाः प्रयासाः सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयस्वालः अवदत् यत् भारतम् एतान् कल्पित आरोपान् स्पष्टतया तिरस्कुर्वति। सः आशां प्रकटितवान् यत् अन्ताराष्ट्रिय समुदायः पाकिस्तानस्य दुष्कृतानां दुरुपयोगानां च उत्तरदायी भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेन कतरदेशे विस्फोटेन 12 भारतीय नागरिकाणां मृत्योः पुनः पुष्टि कृता अस्ति। जयस्वालः अवदत् यत् अस्यां घटनायाम् आहत्य 66 जनाः घातिताः सन्ति, ये सम्प्रति चिकित्सां प्राप्नुवन्ति। कतरदेशे अग्निदुःखद घटनायां प्रभावितानां जनानां साहाय्यार्थं तमिलनाडु सर्वकारेण सहायता घोषिता। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अस्यां घटनायां ये प्राणान् त्यक्तवन्तः तेषां परिवारेभ्यः 10 लक्ष रूप्यकाणां अनुग्रह राशिं घोषितवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः गतसायं राष्ट्रपतिभवने नागरिक सम्मान समारोहे पद्म पुरस्कार प्रदानं कृतवती। पत्रकारः पी नारायणन्, टेनिस क्रीडकः विजय अमृतराज, अभिनेतारौ मम्मुट्टी तथा आर माधवन्, गायिका अलका याज्ञिकः च प्राप्त पुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति। अस्मिन् वर्षे सर्वकारेण आहत्य 31 पद्मपुरस्काराः घोषिताः आसन्। एतेषु 5 पद्मविभूषणं, 3 पद्मभूषणं, 3 पद्मश्रीपुरस्काराः च सन्ति। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् यल्निनो कारणात् उत्पद्यमानस्य दुर्बल मानसूनस्य संभाव्य प्रभावस्य निवारणे भारत सर्वकारः कृषकाणां सहायतायै पूर्वसिद्धतां कुर्वन् वर्तते। इति वार्ताः।
1: ये मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। जन सूचनाएं। पहले सुनिए मौसम की जानकारी। आज सुबह 5:30 बजे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 3.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सापेक्ष आर्द्रता 94% और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.9 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:57 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:46। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए आज के विमान उड़ान संबंधी जानकारी। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 आज ही दिन में 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा आज 24 जून को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक पेट टॉक बियॉन्ड द बाउंड नामक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्य

कार्यक्रम का विषय है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सुअर एवं बकरी पालन की संभावनाएं और लाभ। कार्यक्रम में पशु चिकित्सालय मंगलुटान के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लालहले निदाद साहेबराव विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। दर्शक इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूरभाष संख्या 2447445 अथवा 2456062 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
2: नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
1: जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कला एवं संस्कृति निदेशालय कल से माहव्यापी थिएटर कार्यशाला आयोजित करेगा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश हज समिति ने हज 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है।

एडीएस एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। नए नियमों के तहत वित्तीय संस्थानों को ऋण गारंटी सुविधा मिलेगी और एमएसएमई के पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल होगी। आरबीआई ने टीआरईडीएस संचालकों के लिए न्यूनतम शुद्ध संपत्ति की सीमा 25 करोड़ रुपए निर्धारित की है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि भुगतान सीधे एमएसएमई विक्रेताओं के बैंक खाते में जमा हो। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने चिकित्सा उपकरणों की वैश्विक निविदा जांच जीटीई छूट सूची में संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू निर्माताओं, आयातकों, उद्योग संघों, खरीद एजेंसियों और स्वास्थ्य संस्थानों सहित सभी संबंधित हितधारक 15 जुलाई से पहले सहायक जानकारी सहित अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अंडमान निकोबार पुलिस अंडमान निकोबार शतरंज संघ के सहयोग से 27 और 28 जून को पुलिस

निर्धारित की है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि भुगतान सीधे एमएसएमई विक्रेताओं के बैंक खाते में जमा हो। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने चिकित्सा उपकरणों की वैश्विक निविदा जांच जीटीई छूट सूची में संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू निर्माताओं, आयातकों, उद्योग संघों, खरीद एजेंसियों और स्वास्थ्य संस्थानों सहित सभी संबंधित हितधारक 15 जुलाई से पहले सहायक जानकारी सहित अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अंडमान निकोबार पुलिस अंडमान निकोबार शतरंज संघ के सहयोग से 27 और 28 जून को पुलिस लाइन में दूसरी डीजीपी कप अंडमान निकोबार राज्य ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन करने जा रही है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का वर्ष 2026-27 का AICF पंजीकरण अनिवार्य है। इस प्रतियोगिता के लिए ₹350 का प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। ओवरऑल ओपन कैटेगरी के विजेताओं को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा सब जूनियर और जूनियर श्रेणियों के लड़कों और लड़कियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को अलग से ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इच्छुक प्रतिभागी अपनी प्रविष्टि कल तक पुलिस लाइन स्थित खेल अनुभाग में जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है थिएटर कार्यशाला और हज आवेदन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कला एवं संस्कृति निदेशालय रंगमंच को बढ़ावा देने के अपने प्रयास के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से थिएटर कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है। कल से शुरू होने वाले इस माहव्यापी कार्यशाला में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रतिष्ठित संकायों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को अभिनय प्रशिक्षण दिया जाएगा। समापन अवसर पर NSG द्वारा एक नाटक का मंचन भी होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश हज समिति ने सभी पात्र और इच्छुक तीर्थयात्रियों से हज 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 20 जुलाई मध्य रात्रि तक www.hajcommittee.gov.in या हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जा सकते हैं। तीर्थयात्रियों को 30 अगस्त तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। हज 2027 के दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण निदेशालय स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश हज समिति के अध्यक्ष कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। पशु चिकित्सालय मंगलोटान में स्थानीय पोल्ट्री किसानों के लिए हाल ही में बैकयार्ड पोल्ट्री चूजों के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के 20 बैकयार्ड पोल्ट्री किसानों के बीच एक दिन के चूजे वितरित किए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग को एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में बढ़ावा देना और ग्रामीण परिवारों के बीच पोषण सुरक्षा में सुधार करना है। इस दौरान किसानों को चूजों के बेहतर रखरखाव के लिए जानकारी दी गई। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आय बढ़ाने, महिला सशक्तिकरण और पोषण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। दक्षिण अंडमान जिला मनरेगा के तहत अनुबंध के आधार पर 11 महीने की अवधि के लिए ग्राम रोजगार सेवक के 4 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को ₹14,000 का मानदेय दिया जाएगा। उम्मीदवार को 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है और उन्हें संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पद के लिए स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लिटिल अंडमान के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन 14 जुलाई शाम 4 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ SDM कार्यालय में जिला कार्यक्रम समन्वयक के पते पर जमा कर सकते हैं।
महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में शैक्षणिक सत्र 2004

0: वे 27 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में विभिन्न विषयों में अतिथि संकाय का पैनल तैयार किया जा रहा है। इस पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है। इस बीच कॉलेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षण संस्थान के घटक अंडमान कॉलेज में भी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में अतिथि संकाय का पैनल तैयार किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को 1,500 रुपये प्रति व्याख्यान का भुगतान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 तक हो सकती है। ये नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी होगी। विस्तृत नोटिस, आवेदन फॉर्म और सेल्फ मार्किंग प्रोफार्मा कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। पूरी तरह से भरे हुए आवेदन फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ 29 जून दोपहर 3:30 बजे तक कॉलेज के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। अंडमान निकोबार पुलिस भर्ती के तहत कुछ पदों के लिए रिक्तियों में संशोधन किया गया है। इन पदों पर कल मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं, जबकि आवेदन पत्र में सुधार खिड़की 27 जून तक खुली रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कला एवं संस्कृति निदेशालय कल से महाव्यापी थिएटर कार्यशाला आयोजित करेगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश हज समिति ने हज 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागनी।

0: देश रागिनी देश रागिनी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश भारत विभिन्नताओं में एकता की बड़ी मिसाल है, जहां हर 10 कदम में अलग अलग भाषा, धर्म और विभिन्न विचारधारा के लोग मिलते हैं। फिर भी इतनी विशाल विभिन्नताओं के बीच अपने देश की एकता को सूत्र में बांधता है अपना देश का प्रेम, जो सर्वोपरि है। लेकिन इन्हीं विभिन्नताओं में एकता और भाईचारे के सौहार्दपूर्ण विचार को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। नफरत किसी भी बात का हल तो बिल्कुल नहीं है, आपसी प्रेम ही नफरत को खत्म कर सकता है।
1: नफरत

देशभक्ति एक महान भावना है जो प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण का भाव सिखाती है। अपना वतन हर व्यक्ति के लिए सबसे प्रिय होता है। इस भूमि पर हमारा जन्म हुआ, जहां हमने शिक्षा प्राप्त की और जीवन के मूल्य सीखे, उसके प्रति हमारा नैतिक जीवन के मूल्यों के प्रति प्रेम रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है।

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने वतन की एकता को सुदृढ़ बनाए, सैनिकों के बलिदान को याद रखे, उनका सम्मान करे। राष्ट्र निर्माण में हम प्रत्येक का योगदान होना चाहिए। राष्ट्र को मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए आपसी भाईचारे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। देश हमारा है और हम अपने देश के अंग हैं। अतः हमारी एकता ही हमें अखंड बनाता है। देश हित, जन हित सर्वोपरि है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। क्रोध तेज हवाओं की तरह है, कुछ देर बाद यह शांत हो जाता है, लेकिन तब तक कई शाखाएं और पत्ते टूट चुके होते हैं जिन्हें दोबारा जोड़ना नहीं जा सकता है।

0: और अब श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में साहित्य दर्पण के इस श्रृंखला में आज आप श्रीमती आशा गुप्ता की स्वरचित काव्य पाठ सुनेंगे।
1: मेरी पहली कविता जिसका शीर्षक है शायद कोई सपन। आई थी मैं जब सपनों में तुम गहन नींद में सोए थे, अपनी पलकों के चिलमन में अपनी दुनिया में खोए थे। धीरे धीरे आई थी पास तेरे और बालों को सहलाया था, फिर माथे पर उंगली फेरी थी, एक स्पर्श चिन्ह लगाया था। तुम हौले से मुस्काए थे, शायद कोई सपना देखा था या मैं ही थी सपने में भी, तुमने बाहों में घेर रखा था। बाहों में मैं ऐसे झूल गई जैसे अब आगे रास्ते गुम हो, तुम्हारी सांसों में भूल गई ये मैं हूं या कि तुम हो। कई पल ऐसे ही गुजर गए, हुए होश नदारद उस पल के, फिर रात कुनमुनाई सी रह गई हम दोनों से जल के। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, कुछ ऐसे ही शब्द गूंजे थे मेरी कानों में, कोयल ने मीठे स्वर में कूके थे। एक राग बह चली जैसे वो हरित हुआ जो सूखा था, कुछ ऐसे ही स्वर तुमने मेरे कानों में जब फूंका था।

चाहा था जो उसका होना, उसमें ही सब विलीन हुआ। मन बगिया का कोई कोना, जैसे तम विहीन हुआ। न मैं थी और न तुम थे, बस हम ही हम रह गए वहाँ। बस एक प्यास थी सीने में, प्रेम रस में डूबा एक जहाँ। मेरी दूसरी कविता है महाभारत अंतस का। कुछ काम ना हो तो सो जाना सबसे अच्छा उपाय होता है। कोशिश करती हूँ स्वस्थ नींद ले लूँ, दिमाग में जड़ता है छाई। चूल्हा चौका दहक कर शांत पड़े हैं, साहित्य लाचार द्रौपदी बनी हुई है, और संस्कृति बाजार में नीलाम हो रही है। अपने पास बचा क्या? हम ऐसे युधिष्ठिर हैं जो बिना चपड़ खेले ही दांव हार कर बैठे हैं। अपना बलदल किसे दिखाएं? ना मैदान है, ना अस्त्र शस्त्र और ना अवसर। वास्तव में इन दिनों रचा जा रहा है अंतस में एक अनोखा महाभारत। एक ऐसा महाभारत जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति भूमिका निभा रहा है। अलग अलग पात्रों में उगते सूरज को हाथ में उठाए वो रोज निकलता है, मगर किरणें कुंद सी चिपकी रहती है उसी सूरज से। फैले तो उजाला हो, कोई झरोखा खुले, मार्गदर्शक नयन पथरीले पग में साथ चलें। सुबह दोपहर में ढलती है समय के साथ, हाथ जलने लगते हैं। आग का गोला उठाए सूरज फिर से काला पड़ने लगता है। शाम सितारों के लिए मचल कर जब रात के पास भागती है ना, तब यही छलिया सूरज हथेलियों से उछलकर आकाश में चिपक जाता है चांद बनकर। तब तो बड़े मजे से चांदनी रात को रंगीन करती है, और मैं खाली हाथ लिए कभी उस चांद को और कभी अपने अंधेरे को देखती रह जाती हूँ। फिर मेरे भीतर का महाभारत ढलती शाम के उद्घोष पर जड़ हो जाता है स्वयं ही युद्ध के ठहराव के साथ। मेरी तीसरी कविता है स्त्री होने का अर्थ। बहुत होते हैं दिन रात, शाम और सुबह, बहुत होते हैं एहसास, इंतज़ार और सपने। इतना कुछ फिर भी नहीं बचा पाते हम जीवन में सूक्ष्मता के वे अनमोल क्षण। बहुत होती हैं बातें मुलाकातें, बहुत होते हैं चाहतों के वादे, और तब भी सरक जाता है हौले से समय आगे आगे। क्या तुमने जाना था या मैंने ही पहचाना था? वक्त एक दिन चोर भी हो जाएगा, और बीच का सीमित सा लम्हा हमारी ही नज़रों से खो जाएगा। कई सवालों और जवाबों में होगे, कई बेसबब के ख्वाबों में होगे, क्योंकि तुम्हारे पास का वक्त हर दम व्यस्त ही रहता है। तुम्हारा हर पल सबल होता है। मैं परिधि की जोगन, मैं समय का यौवन, बाट जोहते जोहते जो एक दिन ढल ही जाता है, पिघल जाता है या फिर हिम बन जाता है। कई बार होता है ऐसा कि स्वयं के माया जाल को काटना चाहती हूँ अहम से, और कई बार ऐसा भी होता है कि मेरा अहम ही मुझे तोड़ देता है। कई बार समझाना भी होता है, फिर कई बार हार जाना भी। तुमसे नहीं, कतई नहीं, बस अपने आप से, अपने हर एहसास से। बंधे होने का सुख कभी लगता है जैसे दुख बन गया हो, या कभी अटकती सी सांसें जीवन का रुख बन गया हो। ये कौन सा रास्ता है, किस राह पर आ निकली हूँ? उठते गिरते जीवन को संभालते संभालते यूं ही? हो सकता है मेरी बातों से तुम्हारा मर्म आहत ना हो, या ये भी हो सकता है ये बातें उतनी सार्थक ना हो। शायद यही सत्य है। न जाने क्यों अब लगता है पुरुष होने की परिभाषा तुम समझा नहीं सकते, और ना मैं स्त्री होने का अर्थ बदल सकती हूँ। मेरी चौथी व अंतिम कविता है नौ रूप।

0: नर की प्यारी नारायणी तुम जगदम्बा तुम जननी हो। जो तुलसी का सम्मान करे, जो देवी होने का मान भरे, प्रकृति पर नेछावर होने वाली तुम रुद्र प्रिया रुद्राणी हो। स्वयं सहकर हर स्थिति हर दुख, पहुंचाती रहती हो सबको सुख। बनकर बट वृक्ष छाया देती, तुम तपोवन की तपस्विनी हो। सुचिता मृदुला तन और मन, बहती ओज की कोई किरण, आलोकित खंड खंड करती, तुम दिव्य रूप दिव्यानी हो। तुम विश्व रूप आराध्य बनी, गौरव शांति का साध्य बनी, कष्टों को हंसकर सहने वाली, तुम ब्रह्म स्वरूप ब्रह्माणी हो। वात्सल्य क्षमा की तुम देवी, कोमल निर्मल है तेरी छवि, सब पर करुणा करने वाली, तुम काव्य रूप कल्याणी हो। तुम सर्वलोक आलौकिक हो, तुम नौ देवियों में एक हो। अर्थ मोक्ष अविजित तुम, शत्रु हंता हो कात्यायनी हो। घन काले कितने भी छाए, कांटों से भरी हो चाहे राहें, हर परिस्थिति में जो डटी रही, तुम भय विमुक्त भवानी हो। तुम अन्नपूर्णा चैतन्यमयी, त्रिलोक पूज्या अक्षय दात्री, दैन्य दुखों को हरने वाली, तुम शिव शक्ति शिवानी हो। मृदुभाषी व्यवहार कुशल, तुम सुहासिनी करती मंगल, माया रूपेण महिमा तेरी, तुम सिद्धि सिंह वाहनी हो। फिर क्यों हम कमजोर बने, मुखरित हूं ना मौन रहें, नवरूप हमारे भीतर है, कौशल्यमयी सुखदायिनी हो। नर की प्यारी नारायणी तुम जगदम्बा तुम जननी हो।
1: श्रोताओं, अभी आप साहित्य दर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत कवित्री श्रीमती आशा गुप्ता की स्वरचित काव्य पाठ सुन रहे थे। और अब दोस्तों, कार्यक्रम का रुख करते हैं गीत संगीत की ओर, और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: फिल्म गोलमाल का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार आर डी बर्मन। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
1: बीड़ी सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पे कॉल करें।
2: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
3: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
2: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
3: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
2: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
3: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
2: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
3: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
2: अब हम कर सकते हैं।
3: अब हमें करना होगा।
2: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
3: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
2: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा
4: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों, लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
6: हेलो मम्मा।
7: आरबीआई कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और अब श्रोताओं, कुछ आवश्यक सूचनाएं। आज सुबह 8:30 पर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 39वें स्थापना दिवस पर कल 23 जून 2026 को आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026।

दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा आज 24 जून को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक पेट टॉक बियॉन्ड द बाउंड नामक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सुअर एवं बकरी पालन की संभावनाएं और लाभ। कार्यक्रम में पशु चिकित्सालय मंगलुटान के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाहले निनाद साहेब राव विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। दर्शक इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूरभाष संख्या 2447-45 अथवा 2456-62 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचनाएं समाप्त हुई।

और अब श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अरमान कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आपको सुनवाते हैं नाम फिल्म का ये गाना, मनहर उदास और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के शब्दों को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: येसुदास के गाए दादा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना

0: और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज

0: डमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का

0: 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे

0: ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने सीयूईटी परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में सीयूईटी के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली एनसीआर में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threats for us.
2: Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from

0: It's the Tribune. An editorial in the Pioneer writes on how e-governance is transforming Grameen Bharat. With nearly 900 million people living in rural India, the effectiveness of our Panchayati Raj institutions will shape the trajectory of the nation's development, as it is the bedrock upon which a Viksit Bharat will be built. India and US rework trade deal amid tariff changes as fresh talks begin after Modi-Trump G7 meet, notes the Asian Age. The Statesman reports about a record surge in Vaishno Devi pilgrims as the number crosses the 50 lakh mark well before the year reaches its halfway point. International Maritime Organization announces plan to evacuate vessels stuck in Persian Gulf due to the war in West Asia, writes the Hindu. And finally, The Economic Times writes about Gujarat government focusing on Ranshala to educate children of salt pan workers by converting unusable buses into classrooms equipped with smart TVs and TV connectivity dedicated to educational channels. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है. सुबह के समय 8:31 हुए हैं. श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 39वें स्थापना दिवस पर कल 23 जून 2026 को आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट. वाचिका जयशीला.
3: श्री विजयपुरम स्थित केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 49वां स्थापना दिवस संस्थान के डॉ. टी के दत्ता सम्मेलन कक्ष में गरिमामय वातावरण में मनाया गया. समारोह में कृषि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं तथा मत्स्य विभाग की सचिव सुश्री पल्लवी सरकार IAS मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं. इस अवसर पर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. जय सुंदर, नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री के विजय पांडियन, ICAR के उप महानिदेशक डॉ. ए के नायक, संस्थान के वैज्ञानिक, विभागाध्यक्ष, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे. कार्यक्रम का शुभारंभ गीत तथा अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ. इसके पश्चात निदेशक डॉ. जय सुंदर ने स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए संस्थान की उपलब्धियों, अनुसंधान गतिविधियों तथा भविष्य की कार्य योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया.
4: पिछले 48 वर्षों से केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इन द्वीपों के लिए काफ़ी काम किया है. इसमें सभी की भूमिका रही है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो तकनीकी कर्मचारी हो, चाहे वो सहायक कर्मचारी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, फाइनेंस हो, सभी की भागीदारी इसमें रही है. और इसमें हमें पूर्ण सहयोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, बाकी डिपार्टमेंट का हमेशा मिलता रहा है. और बिना किसानों के हमारा जो भी तकनीक है, जो भी हम तकनीक बनाते हैं, वो सफल नहीं होता है. इसलिए जितने भी इसमें किसान आए हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स आए हैं, सभी का इसमें भूमिका रही है हमारे संस्थान को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए. मैं इस मंच से जितने भी हमारे पूर्व निदेशक हैं, पूर्व कर्मचारी हैं, हमारे जितने भी किसान बंधु रहे हैं, सभी स्टेक होल्डर सभी को मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं. मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक यूनिक संस्थान है जो द्वीपीय कृषि यानी कि आइलैंड एग्रीकल्चर के रिसर्च के लिए काम करता आ रहा है. एक रीजनल स्टेशन मिनिकॉय में भी है, साथ ही साथ 3 कृषि विज्ञान केंद्र भी है. हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता है, इसके कंजर्वेशन के लिए,

संरक्षण के लिए, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए हम काम करते हैं। इसी उद्देश्य को रखते हुए हम पिछले 4.5 दशकों से हम काम करते आ रहे हैं, और इसके लिए कई सारे पहल जो है हमारे संस्थान ने किए हैं, जैसे कंजर्वेशन हो गया, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट हो गया, IFS मॉडल हो गया, लैंड डेवलपमेंट हो गया, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन, पॉलिसी सपोर्ट, इन सारे बिंदुओं पर हमारे संस्थान काम करता आ रहा है। और मैं इस मंच से पिछले एक साल की कुछ उपलब्धियां आपके सामने में मैं पेश करना चाहूँगा। पिछले वर्ष हमारे संस्थान में काफ़ी उपलब्धियां आई हैं, जैसे 18 जो वैरायटी है, इसमें मैं सेक्रेटरी मैडम का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उनके सहयोग से जो है ये सफल हो पाया, क्योंकि ये बहुत ही सालों से ये हमारा जो है ये केस लंबित था। तो उनके इनिशिएशन से हम पिछले वर्ष 18 हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो है इसको हम रिलीज़ कराने में सफल हुए, जिसमें से धान की 6 हैं, मूंग उड़द की 5 और 2 हैं, बैंगन की 2, मालाबार टैमरिन और तेजपत्ता जो एक यूनिक फर्स्ट टाइम हमारे संस्थान ने पूरे भारतवर्ष में ये वैरायटी को विकसित किया है। और इसमें से आप देखेंगे कि 7 वैरायटी जो है इसको गेजेट नोटिफाई किया गया है। इसमें हमारे जो है 4 धान वैरायटी, आप देखेंगे कि कुल धान का जो वैरायटी है इसका करीब करीब 24% जो क्षेत्र है यहाँ पर अंडमान निकोबार में जहाँ पर धान उगाई जाती है, उसमें हमारे वैरायटी का विस्तार है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुँच रहे। इसमें खासियत जो धान की वैरायटी है 9 और 10 में आप देखेंगे कि इसमें जिंक और आयरन की कंटेंट जो है ज़्यादा है, BLB रेसिस्टेंट क्षमता ज़्यादा है और ये उच्च पैदावार वाले ये जो है किस्में हैं। इसी तरह दाल की भी 3 वैरायटी जो है इसको हमने नोटिफाई कराने में सफल हुए, ये भी करीब करीब 60 से 70 हेक्टेयर एरिया में हमारा ये फैला हुआ है। इसके अलावा बैगन की आप देखेंगे कि 2 किस्में जो है ये बहुत ही प्रचलित है, इसको एक बैक्टल विल्ट रेसिस्टेंट, विल्ट एक बहुत ही एक झुलसा रोग जो हम कहते हैं, एक भयानक बीमारी होती है बैगन में, इसमें करीब करीब 60 से 80% जो है इसमें रेसिस्टेंट की क्षमता है और इसका जो है रूट स्टॉक ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी IHR ने हमसे लिया है और इसका कई मांग भी है दूसरे इंस्टीट्यूट से भी। इसी तरह हमने पहली बार मालाबार टैमरिन की 2 किस्में जो है द्वीप एग्रिम और द्वीप विशाल का भी हमने इसमें विकसित किया है, वैरायटी डेवलप किया है। ये जो मैं कह रहा था द्वीप तेज वन फर्स्ट नेशनल स्पाइस वैरायटी, आप देखिए इसको हमने यहाँ पे डेवलप किए है और इसको रिलीज़ कराई है। इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स देखेंगे कि इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, रिटेंशन ऑफ द कलर ऑन ड्राइंग आफ्टर ड्राइंग के बाद में भी, और ड्राई रिकवरी क्षमता इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे यूनिक जर्मप्लाज्म है, उसको भी हमने रजिस्टर्ड किया है, पंजीकृत किया है, जैसे मैकरंगा पेंडनस, अंडमान कोकोनट ड्वार्फ, वुडी पेपर और कैरी समृद्धि वैरायटी जो एक गुच्छा के रूप में जिसमें फल आता है। IFS हमारा एक स्ट्रॉन्ग एक मॉडल रहा है, इसमें हमने 5 टाइप के इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हमने मॉडल बनाए हैं, चाहे वो पैडी बेस्ड हो, पॉन्ड बेस्ड हो, प्लांटेशन बेस्ड हो, ट्यूबर क्रॉप बेस्ड हो, और इसमें 2 लाख से 4 लाख तक का सालाना जो है इनकम हमने देखा है कि आसानी से जो है किसान प्राप्त कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारा IPR का जो स्टेटस में काफ़ी इसमें हमारा स्ट्रेंथ हुआ है। पिछले वर्ष भी हम करीब करीब 9 पेटेंट हमने इसमें दर्ज किए हैं और इसमें हमने कामयाबी प्राप्त की है, 12 टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क भी हमें प्राप्त हुए हैं। ये सारे पेटेंटेड जो हमें डिज़ाइन और पेटेंट प्राप्त हुए उसके कॉपी हैं। इसके अलावा पिछले वर्ष में हमने 4 जो टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज किया है, जैसे लीफ सेपरेटर, सिनेमन बार्क रबिंग टूल, ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि ड्रजरी रिडक्शन एक टूल है, मेनली वुमेन के लिए वुमेन फ्रेंडली टूल है। इसके अलावा मासमिन, ये मिनी कॉय में मासमिन टूना बेस्ड हमने एक पोल्ट्री फीड का हमने ये डेवलप किया है और इसे कमर्शलाइज भी किया है। एक द्वीप गो फ्लाई फॉर्मुलेशन, एक फ्लाई रिपेलेंट, इसको भी हमने बनाया है, कमर्शलाइज किया है। इसके अलावा माइक्रो क्लाइमेट मॉनिटर सिस्टम, ये प्रेसिशन फार्मिंग के लिए बहुत ही एक नया एक उपकरण हमने इसको बनाया है, पेटेंट किया है और कमर्शलाइज भी किया है। इसके अलावा कंजर्वेशन की दृष्टि से भी हम और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं, जैसे वैल्यू एडिशन, अंडमान कोकम का सिरप जो आप देखेंगे गार्सिनिया धनिखारियनसिस से हमने बनाया है, और पेस्ट जो मैंगो जिंजर के

यूज़ करके हमने ये बनाया है। और ये दोनों टेक्नोलॉजी हम इसको स्टार्टअप के माध्यम से बहुत ही दो यंग एंटरप्रेन्योर इसको फैला रहे हैं, इसका विस्तार हमने किया है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों यंग एंटरप्रेन्योर, इनको हमने ये ट्रांसफ़र किया है, रस एंड रूट नाम से ये जो है टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सेम कलिनरी पेस्ट का मैंगो जिंजर। इसी तरह सिनरब एक बहुत ही एक अच्छा टेक्नोलॉजी है, आप सिनेमन को जब जो हम बार्क निकालते हैं उसके लिए हमने एक टूल का डेवलप किया है, इसे कमर्शलाइज किया है। और ये टेक्नोलॉजी आप देखिए कई सारे राज्यों में भी इसका विस्तार हुआ है, कई सारे राज्यों से हमें डिमांड आ रही है। इसके अलावा GPS बेस्ड जो टेक्नोलॉजी हमने निकोबार द्वीप समूह में इसको हमने डेवलप किया था, इससे करीब करीब 88% जो है इसमें इंक्रीज हुआ है। और ये जो फिश कैचिंग जो ये एबिलिटी है, क्षमता है, ये बड़ी है। ये टेक्नोलॉजी को हमने निकोबार में इसको हमने इस्टेब्लिश किया है और इसको प्रूव भी किया है। इसके अलावा ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से हम हर वर्ष ना सिर्फ यहाँ के फार्मर बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों के जो ट्राइबल फार्मे हैं उन तक भी हमारे जो तकनीकी हम पहुँचाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिवाइस है, फिश एग्रीगेटिंग डिवाइस, इसका भी हमने डिवाइस को इस्टेब्लिश किया था। इससे आप देखेंगे कि करीब करीब 72% जो है इसमें टूना लैंडिंग, टूना फिश कैचिंग का जो है एबिलिटी इंक्रीज हुआ है। ये मिनीकॉय में हमने इसको डिप्लॉय किया है। इसके साथ हमने बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं, संवर्धन का हमने इनॉग्रेट किया था, प्राइमरी प्लांट हार्डनिंग फैसिलिटी है, एग्रोमेट फैसिलिटी को हमने इसका विस्तार किया है, ग्रीन एनर्जी की तरफ भी हम काम कर रहे हैं। अभी तक 33 किलोवाट हो गया है जिसमें करीब करीब हमें 12% जो है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग अभी तक प्राप्त हो रही है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम इसको 40% 50% आने वाले समय में ले जाएं। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में भी हमने काफ़ी काम किया है, 90% जो है अभी हम अपना सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ सस्टेनेबल है। वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव में हम अभी काम करने जा रहे हैं जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी हमारे फार्म हैं हमें सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। सीड प्रोडक्शन जो काफ़ी एक डिमांड है इसमें भी हमारा पार्टिसिपेटरी मोड में हम काम कर रहे हैं और इसको भी स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट ड्राइंग शेड वैल्यू एडिशन VCO यूनिट में का भी हम लोगों ने इनिशिएट किया है। ये बायोफ्लॉक इनिशिएटिव हमने किया था, ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है और इसमें आसानी से कोई भी झींगा पालन या तो मछली पालन कर सकते हैं। 100 दिनों में करीब करीब आप देखिए 30 किलो जो है झींगा आराम से प्राप्त कर सकते हैं, आपको इसमें बड़ी फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है। और BC रेशियो भी देखिए करीब करीब 1.9। इसी तरह हमने लास्ट ईयर FRP कार्प हैचरी के लिए भी यूनिट जो है इस्टेब्लिश किया था। उम्मीद है इस साल से हम जो लोगों का जो डिमांड है फिश सीड का उसको हम उपलब्ध करा पाएँ। इसी तरह VCO यूनिट का हमने इस्टेब्लिश किया है, इसमें हमने कई सारे लोगों को प्रशिक्षण ये दिया है। एग्रो इकोवाक अभी हमारा बहुत ही मोमेंटम गेन कर रहे हैं, कई सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। पिछले वर्ष हमने कई सारे गतिविधियाँ की हैं, हमारे उपनिदेशक महोदय हमारे बीच आए थे, किसान मेला का इनॉग्रेशन किया था, वन हेल्थ सेमिनार किए थे, उसके अलावा मीडिया कर्मी भी 2-3 राज्यों से आए थे, हमारे से संपर्क किए थे, उसके बाद RAC मीटिंग हुआ था। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी आप देखेंगे हमारा 100% ई ऑफिस है, EHRMS, जीरो पेंडिंग पेंशन केसेस, एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लानिंग हम पहले से करते हैं, टाइमली डिस्पोजल ऑफ RTI केसेस। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, रिसर्च में हम सभी लोगों की मदद से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया में भी हमारा एक उद्देश्य है कि एटलीस्ट 1 टेक्नोलॉजी 1 डे हम इसको पब्लिश करें। इसमें भी हमारे जो यूनिट है AKMU वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों और दूसरे कर्मचारियों को कई सारे अप्रिसिएशन और अवार्ड भी प्राप्त होते रहे हैं, लास्ट ईयर भी हमें मिले हैं। और हमारा अगले आने वाले समय में मेन उद्देश्य रहेगा कि हम IFS में हम ज़्यादा काम करें, हाई यील्डिंग वैरायटी में हम ज़्यादा ये काम करें, वैल्यू एडिशन हो गया है और मेनली रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी लाइव स्टॉक में हम इसमें ये काम करेंगे। और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये एरिया हमेशा खुला हुआ है, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करेंगे और पॉलिसी सपोर्ट हो गया, इंटर कोऑर्डिनेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर लोकल डिपार्टमेंट, दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच वी विल बी डूइंग इन द कमिंग ईयर्स। एंड खेत बचाओ अभियान में भी अभी जो चल रहा है इसमें भी हमने बहुत सारे इसमें अभी काम किए हैं और बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन हमें अभी करना है। मैं इन सारी उपलब्धियों के लिए हमारे

0: सचिव डेयर और DGICR को मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे काउंसिल को मैं धन्यवाद देता हूँ, DDG NRM, DDG हॉर्टिकल्चर साइंस, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल्स और बाकी स्टाफ हेडक्वार्टर के और प्रीवियस डायरेक्टर्स, REC के टीम, जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं, जो रिटायर्ड है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का मैं धन्यवाद देता हूँ और जो किसान बंधु आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अभी हम गोल्डन जुबली ईयर में प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो एक गोल्डन जुबली ईयर रहेगा, हम सब मिलकर जो विकसित भारत का एक सपना हम जो देख रहे हैं उसमें एक साथ मिलकर हम इस कृषि को काफ़ी अधिक ऊंचाई तक ले जाएंगे।
1: स्थापना दिवस व्याख्यान को संबोधित करते हुए ICAR नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर AK नायक ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, टिकाऊ कृषि पद्धतियों तथा द्वीपों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: I think the institute should celebrate the achievement which it has made till date, and also on this day we should retrospect what are the things we have not been able to do and how we can take this institute still to a better height. I think that is the time to introspect. I think Dr. Jaiswar has already described briefly the significant achievement of the institute which you have made during the last 1 year, and in any scale these achievements are tremendous achievement, looking into the remote locations and the manpower which you are having, this is a tremendous achievement.
1: केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार विभिन्न प्रकाशनों, तकनीकी दस्तावेजों एवं ज्ञानवर्धक सामग्री का लोकार्पण भी किया गया।
3: कंटिंजेंसी प्लानिंग बाय डॉक्टर अभिलाष एंड टीम, सस्टेनेबल टूना फिशरीज एंड ट्रेडिशनल वैल्यूएशन इन लक्षद्वीप बाय डॉक्टर EK सनीरा एंड टीम, फार्मर इंस्टीट्यूशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पाथवे टू कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी बाय डॉक्टर शरद।
1: समारोह के दौरान उत्कृष्ट किसानों तथा संस्थान के कर्मियों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में विशिष्ट अतिथि श्री के विजय पांडियन, नाबार्ड के महाप्रबंधक ने द्वीपों के किसानों के विकास के लिए नाबार्ड की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया।
4: नाबार्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू रिसर्च एक्चुअली इट अचीव्स इट्स ट्रू अल्टीमेट रिजल्ट्स व्हेन इट एक्चुअली गेट्स इंप्लीमेंटेड एंड गेट्स कमर्शियलाइज्ड, एंड द फोकस पॉइंट दैट इज द फार्मर्स एंड अदर पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन इट टू इंप्रूव इट्स लाइवलीहुड बाय जनरेटिंग इनकम एंड टेंजिबल सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। This year we had done a number of projects in the early years, even though as a scientist, at a scientist level, through the research institutions like CRE and other ICAR institutions, KVKs and other institutions, the basic research and other things is going on. As I said, unless it gets implemented at the ground level and the real benefit occurs to the farmers, it may not give its real benefit. So scientists will be happy, like Wheatstra on just now sir has presented, unless its ground level is implemented and the real benefit occurs, it may not find its the research may not be having its true meaning, because scientists as we all are making lot of efforts. As we've seen abhi sara ko sara yahan to pura sabko award mil gaya na idhar, maybe except for the people in the dais all are got. So it is really immense happiness it gives actually to give such recognition. So where NABARD schemes and all other things you can see in the website wherever you want actually. That's the one thing. But the real thing is where NABARD actually gets comes. Because once research is done, at the time of promotion, means when you are bringing up to the field, when you are connecting with the commercialization and further promotions, training and development, NABARD is implementing a lot of promotional projects. Not only that, the farmers, fishermen, agriculturists, whomever you call at the ground level and rural development, we are acting as a connecting bridge actually. By bringing the finance from the various sources and giving it as a very affordable

0: rate at very, very sustainable rate, maybe at 3%, 2%, 4.5% or 5% per year with the support of the government. Of course, depends on the various states and other places how the government is implementing the subsidy. So, to cut short my this one, NABARD is here to help to commercialize, like our secretary madam said. Indeed, we had even yesterday we met our chief secretaries are also there. They also had hinted some few activities to be taken up on priority. We had already done GI registration of seven products of Andaman Nicobar and Islands. Other 8 products are in the pipeline actually. It has already been submitted and is in the pipeline. We hope that some issues are going on. We will resolve it soon and we will bring it again. GI tech registration only, as you know, it may not give the real benefit unless we commercialize. Unless we commercialize means the real benefit, as I said, just to come and flow to the farmers. So here we once again like to indicate that we are here for the support which is needed in conversation, financing and whatever we can do at this level in Andaman Nicobar Islands. So our office is here, very near actually. You are all welcome to our office, whichever the support you want.
1: Mukhya Atithi, कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा एवं मत्स्य विभाग की सचिव सुश्री पल्लवी सरकार ने अपने संबोधन में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विस्तार कार्यों की सराहना की।
2: मैं इस संस्थान से जब से सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बनी हूँ तब से जुड़ी हूँ। उससे पहले शायद एक दो बार आई हूँ, बट एज अ रेगुलर सेक्रेटरी आई हूँ। जब यहाँ पे एग्रीकल्चर मैंने टेक ओवर किया तब मुझे यहाँ कैरी में कितना काम चल रहा है ये पता चला। इवेंचुअली मुझे जब एनिमल हस्बेंड्री मिला तब वहाँ के डिवीज़न का भी पता चला कि यहाँ पे तो और काम हो रहा है। एंड फाइनली नाउ आई हैव टेकन ओवर फिशरीज़ आल्सो। तो उस वक्त भी फिशरीज़ डिवीज़न के साथ अलग से मीटिंग हुई, तब हमें पता चला कि ये तो ऑलराउंड काम चल रहा है। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट और भी रूरल डेवलपमेंट में भी कैरी काम कर रहा है। जैसे डॉक्टर जयसुंदर जी ने पहले ही बताया कि ये कृषि कल्याण के लिए ओवरऑल काम करते हैं और एक अनोखा इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ऐसा इंस्टीट्यूशन आपको बाकी जगह पर नहीं मिलेगी। जब भी हम भारतवर्ष में ICR इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तब उनका बहुत ही स्पेसिफिक रहता है कि वो शायद पोल्ट्री डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, शायद फिशरीज़ डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, फिशरीज़ में भी एक पर्टिकुलर डिवीज़न में काम कर रहे हैं। लेकिन जब कैरी की बात आती है तो वो 360 डिग्री में काम करते हैं, चाहे फिशरीज़ में ही हो। आप देखिए ब्रैकिश वाटर पर भी इनका काम चल रहा है, GPS कैसे करना उस पर भी, एंड एनिमल हस्बेंड्री में आप देखिए। तो हर तरह का काम यहाँ पर चलता है और हमारे कृषि कल्याण के लिए इनका हमेशा से ही फोकस रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि एज यू प्रोसीड टू द गोल्डन जुबली ईयर आप और नए ऊंचाइयां पहुँचने की कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आपकी ज़रूर साथ देगी। बस 3 चीज़ों पे मैं खासकर जोर देना चाहूँगी। एक तो जैसे आपने ऑलरेडी कहा, 1 टेक्नोलॉजी पर डे आपका ऑलरेडी सोशल मीडिया का एक थीम है, तो ऐसे और अनेक टेक्नोलॉजी आप लाएं और हर फार्मर, एक फार्मर इस द्वीप में ऐसा ना रह जाए जिन तक आप पहुंचे नहीं हो, तो हर एक फार्मर तक आप पहुंचे, ये मेरी एक अनुरोध है। दूसरी अनुरोध है कि अभी हमारे द्वीपों में जो है अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, इस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। और स्किल डेवलपमेंट हमारे जो युवक हैं और युवतियाँ हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की एक एवेन्यू, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कैरी इस पे काम करें। ऑलरेडी जब मैं आई तब मैंने देखा कि बहुत सारे वैल्यू एडिशन हो, बहुत सारे पैटेंटिंग हो इन्होंने किया हुआ है। ऐसे ही और भी आप करें ताकि जितने भी हमारे यहाँ पे युवक हैं उनको खास करके कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना एम्प्लॉयमेंट का स्कोप रहे, ये मेरी दूसरी अनुरोध रहेगी। और तीसरी अनुरोध, जो आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं बट आगे भी आप इसको करें, ये अनुरोध रहेगी कि क्लाइमेट रिसिलेंट एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज़ हो, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उस पर और भी काम करते जाएं। और जितने भी आप टेक्नोलॉजीज आगे निकालेंगे वो सारे टेक्नोलॉजीज़ का बेस

0: सकता है क्लाइमेट रेसिलेंस, क्योंकि हम ऐसे जगह पे हैं और कैरी शायद लक्षद्वीप के लिए भी है, तो लक्षद्वीप में भी क्लाइमेट रेसिलेंस की बहुत बात होती है, क्योंकि वहाँ की इकोसिस्टम भी इज़ अ हैवीली आइलैंड एंड क्लाइमेट डिपेंडेंट इकोसिस्टम। तो मेरी ये तीन ही अनुरोध हैं, ऑलरेडी जितना आप काम कर रहे हैं और भी इसमें आपकी सफलता मिले।
1: समारोह का एक विशेष आकर्षण वो सत्र रहा जिसमें उपस्थित किसानों तथा सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों ने केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ अपने अनुभवों और भावनात्मक जुड़ाव को साझा किया।
2: तब शुरुआत में हम छोटे छोटे ट्रेनिंग बहुत देते थे सर लोग, जैसा मशरूम का ट्रेनिंग, उसमें भी बेनिफिट हुआ। फर्स्ट लेडी हमारा 2 times हम मशरूम को सक्सेस करके दिखाई, सर लोग सब आए मशरूम को देखे। फिर सेकंड लेवल हम स्पाइसेस के ऊपर काम करी, स्पाइसेस का ट्रेनिंग भी हमारा कैरी से मिला और केवी के से मिला। अंडमान में चिनामन बहुत होती है, ब्लैक पेपर, तेजपत्ता, ये सारा बहुत मिलती है। यहाँ का टूरिस्ट काफ़ी लोग आते हैं, अच्छा बेनिफिट होगा करके वो बिजनेस में मैं चूज करी। बहुत सारा ट्रेनिंग यहाँ लेके ही हम जो भी हम बिजनेस शुरू करी, तो यहाँ में टूल्स वगैरह भी दिए थे हम लोग। काम करने का पहले मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, सर लोग इतना पुशअप करके हर चीज़ में। हमारा फ़ोन आता था, मैडम आप मीटिंग में आइए, मैं जाती थी, कुछ तो वहाँ से सीख के हम आती थी, यानी कि पैसा दिया वो मतलब कुछ है, बहुत कुछ सीखने मिला, टेक्नोलॉजी के भी बारे में सीखने मिला। हम सोचा जाए तो मैं फार्मर का बेटी हूँ, बचपन से मेरा पापा अपना खेतों में काम करवाते थे हम लोग का, हम उसमें पूरा इंटरेस्टेड है। लेकिन हम जो स्पाइसेस के ऊपर काम करा, तो लगातार अंडमान में ऐसा जगह नहीं है कि हम कहीं गए ही नहीं, सारा जगह से जैसा अडबे से, एवलक से, गुप्तापारा, वंडूर, इस तरह हर जगह से हम स्पाइसेस कलेक्ट करती है। लेकिन हम लोग एक भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ते, कैरी से हम लोग इतना बेनिफिट मिला कैरी केवी के वे में, और हर प्रोग्राम में हम लोग पार्टिसिपेट इसीलिए करते, बहुत कुछ जानकारी मिलती है, बहुत बेनिफिट है। हम अभी आज ये कैरी केवी के वजह से आज जो हम यहाँ खड़ी है आप लोगों के सामने, हम सही में बहुत गर्व से बात करती हूँ।
3: साइंटिस्ट और टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सब मिल के 10 staff था, फिर आस्ते आस्ते बढ़ के अभी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया, बहुत खुश होता है।
4: तो डॉक्टर साहब ने मौका दिया, कल मैं सर से मिला था, मैं सर एक ये हमारे जो गेहूं की किस्म है जो कि मैंने डेवलप वहाँ पे की है, इसका किस्म का नाम है पूसा सृजन। तो ये बाकी और गेहूं के जैसा नहीं है, बाकी और गेहूं हमारे सेमी ड्वार्फ वीट होते हैं, उनकी जो हाइट अराउंड 1 meter के आसपास है, 80 to 100 centimeter। ये जो गेहूं है ये 140 to 150 centimeter टॉल है। तो बेसिकली मैं काम करने चला था लॉजिंग रेजिस्टेंस पे कि गिर जाती है फसल, किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। तो करते करते जो हमने आर्किटेक्चरल चेंज किए, तो उसमें से हमें क्या मिला कि जो ये बायोडिग्रेडेबल जो स्ट्रॉज का हमें एक अल्टरनेट मिल गया, जो कि मार्केट में जो दूसरे अल्टरनेट है जैसे बैम्बू बेस्ड है, पेपर बेस्ड है, या फिर जो वो हैं, तो उनमें एक तो कॉस्ट का इशू है, दूसरा वो उतने अगर हम पेपर की भी स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं सौगी हो जाती है, जल्दी गल जाती है, उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसमें हम सिंथेटिक डाई यूज कर रहे हैं, कलर यूज कर रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। उसमें जो ग्लू यूज कर रहे हैं उस पेपर को रोल करने के लिए, बाइंड करने के लिए, वो भी फूड ग्रेड का है या नहीं है ये भी क्वेश्चनेबल है। तो एक जो चीज़ थी कि बिल्कुल नेचुरल और सेल्युलोज फाइबर से बना होता है इसका तना, तो नेचुरल है, बायोडिग्रेडेबल है, और कोस्टल एरियाज़ में हम जहाँ जहाँ पे ये सैंपल्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये गेहूं का इंटरनोड है एक टिलर से। तो फायदे क्या होंगे कि किसान को अनाज तो मिलेगा ही मिलेगा, दाने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो वो भी बायोफोर्टिफाइड है। तो जो पहले पुराने लोग होते थे उनको कहते थे ना देसी गेहूँ जिनकी बात करते थे, तो देसी गेहूँ का तना कमजोर होता था, गिर जाते थे, टॉल होते थे। तो ये इसका जो तना है वो काफ़ी मजबूत है, स्टडी है, और इसमें हमें बड़ा इजीली सॉल्यूशन मिल सकता है।
5: 49 ईयर्स ऑफ जर्नी आई कुड एबल टू कंट्रीब्यूट टू दिस इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स एज ए साइंटिस्ट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो

0: my best wishes for upcoming golden jubilee years of Central Island Agriculture Institute.
1: पिछले 49 सालों में कैरी ने आइलैंड के एग्रीकल्चर रिलेटेड सब फील्ड में योगदान दिया है. हॉर्टिकल्चर, एनिमल हजबेंड्री, फिशरी डिवीजन, इवन एक्सटेंशन एक्टिविटी में भी हम केवीके के थ्रू काफ़ी हमारा उल्लेखनीय योगदान रहा है. इसके अलावा हमने फूड न्यूट्रिशन, अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स, इस पर काफ़ी फोकस किया है. और अभी कुछ सालों में हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इस सब पे भी हमारा फोकस बढ़ा है.
2: कि पहले यहाँ कुछ नहीं था तो उस टाइम से वो स्ट्रगल करके, जो स्टाफ हमको स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, उस काम को जारी रखे हुए आगे ज़्यादा उससे ज़्यादा काम करके उसका इंस्टीट्यूट को और आगे लेने का संकल्प हम करेंगे और अच्छे से काम करके इस इंस्टीट्यूट का नाम आगे ले जाएंगे, यही मेरा कामना है.
3: 87 में ज्वाइन किया था गहरी में फिशरी साइंस डिवीजन में. उसके बाद प्रमोशन हुआ, फिर केवीके हेड बन गए थे. तो हमने देखा जो जर्नी हमने तय किया अंडमान आइलैंड के लिए, किसानों के लिए, उस समय बहुत डिफिकल्टी था. हम लोग साइकिल में जाते थे या ठेला गाड़ी ले करके, उसमें सामान ले कर डिगलीपुर जैसा जगह में भी काम किया. उसका कुछ जो बता सकते हैं तिरुपटी जी है, वो भी हमारे साथ में बहुत काम किए हैं. और आइलैंड में भी बहुत सारा तकलीफ था, इंस्टीट्यूट भी छोटा था, लोग कम थे, लेकिन काम बराबर होता था, बहुत अच्छे तरीके से काम होता था हम लोगों का.
4: कार्यक्रम के उपरांत सचिव कृषि एवं मत्स्य सुश्री पल्लवी सरकार ने संस्थान परिसर में लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया तथा केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न उत्पादों, तकनीकों और नवाचारों की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने वैज्ञानिकों से संवाद कर अनुसंधान उपलब्धियों तथा उनके किसानों तक प्रभावी क्रियान्वयन के विषय में चर्चा की. समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन, राष्ट्रगान, सामूहिक छाया गीत तथा वैज्ञानिक किसान संवाद एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सत्र के साथ हुआ. इस अवसर पर वैज्ञानिकों और किसानों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग पर चर्चा की गई. 49वें स्थापना दिवस समारोह ने कृषि अनुसंधान, नवाचार, किसान कल्याण और सतत कृषि विकास के प्रति केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की प्रतिबद्धता को पुनः सशक्त रूप से रेखांकित किया.
5: अभी आप केंद्रीय द्वीपीय अनुसंधान संस्थान के 39वें संस्थापना दिवस पर कल 23 जून 2026 को आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे. वाचिका थी जयशीला. हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं. सुबह के समय 9:02 हुए हैं और अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने. श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं ललकार फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में इंदिवर के बोल हैं व कल्याण जी आनंद जी का संगीत.
6: आज गालो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, कौन जाने कल कोई साथी छूट जाए.

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार अख्तर रोमानी का लिखा गाना आपको सुनवा रहे हैं हसीना मान जाएगी फिल्म से, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी।

0: श्रोताओं, तराने सुहाने कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के उस पार आपको सुनवाएंगे मेरे सनम फिल्म का गाना।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: तो याद रखना दोस्त, खुद के लिए और अपनों के लिए लेनी है दवा रोज।
1: कौन सी?
0: अरे वही
2: ARTI। तो ARTI बोलो, रोज लिया क्या?
3: HIV AIDS के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए ARTI रोज लिया क्या? नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब लीजिए सुनिए OP नैयर के संगीत निर्देशन में तैयार मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना मेरे सनम फिल्म से, गायक कलाकार मोहम्मद रफी।

0: श्रोताओं, तराने सुहाने कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के उस पार आपको सुनवाएंगे मेरे सनम फिल्म का गाना।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: तो याद रखना दोस्त, खुद के लिए और अपनों के लिए लेनी है दवा रोज।
1: कौन सी?
0: अरे वही
2: ARTI। तो ARTI बोलो, रोज लिया क्या?
3: HIV AIDS के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए ARTI रोज लिया क्या? नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब लीजिए सुनिए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में तैयार मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना मेरे सनम फिल्म से, गायक कलाकार मोहम्मद रफी। निकोबार द्वीप समूह में सुअर एवं बकरी पालन की संभावनाएं और लाभ। कार्यक्रम में पशु चिकित्सालय मंगलूटान के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाहले निनाद साहेब राव विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। दर्शक इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूरभाष संख्या 2447454 अथवा 2456666 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना झुक गया आसमां फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल थे व शंकर जय किशन का संगीत। और अब कार्यक्रम के आखिर में शामिल कर रहे हैं धड़कन फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, रवि का संगीत है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
7: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
6: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
7: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
6: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
7: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
6: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
7: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
6: अब हम कर सकते हैं।
7: अब हमें करना होगा,
6: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
7: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
6: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनवा रहे हैं। इनके साथ तबले पर गुलाम सुल्तान खान, सारंगी पर लियाकत खान तथा हारमोनियम पर मशकूर हुसैन ने संगति की है। तो आइए सुनते हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का हिंदुस्तानी शैली में गाया राग मियां की तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का हिंदुस्तानी शैली में गाया राग मियां की तोड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं यादें इस फिल्म से। हरिहरन की आवाज़ में बोल आनंद बख्शी के हैं व धुन बनाई हैं अनु मलिक ने।

आइए अब सुनते हैं अभिजीत और चंदना दीक्षित की आवाज़ों में कुली नंबर वन। इस फिल्म का ये गीत रचना समीर के हैं व संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने।

सलीम सुलेमान के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए फिल्म बैंड बाजा बारात का ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं।

अब पेश है समीर का लिखा एवं नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है रंग।

श्रोताओं, एक सूचना। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा आज 24 जून को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक पेट टॉक बियॉन्ड दी पॉन्ड नामक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सुअर एवं बकरी पालन की संभावनाएं और लाभ। कार्यक्रम में पशु चिकित्सालय मंगलूटान के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लहली निनाद साहेबराव विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। दर्शक इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूरभाष संख्या 2447454

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गाता चल को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं सईद कादरी का लिखा एवं जीत गांगुली का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ब्लड मनी।

आइए अब सुनते हैं अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म बाघी का ये गीत।

और अब कार्यक्रम के अंत में पेश है मनोज मुंतशिर का लिखा एवं जीत गांगुली का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। फिल्म का नाम है वन नाइट स्टैंड।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1313वीं कड़ी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और W सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी,

0: बाघ विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना जी। किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुंब सर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात? जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गई। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब सर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ceiet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत

0: पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।

0: बली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी

0: मृत्यु शैया पर मात्र दो पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
2: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1313वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं हम तो मोहब्बत करेगा इस फिल्म के एक गीत से। इस गीत को गाया है सोनू निगम, सुनिधि चौहान और साथियों ने। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, वधुन बनाई है अनु मलिक ने।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए फिल्म जोश का ये गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में बोल समीर के हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: If driving is art, you are the artist. You don't need a reason to drive. You need a Swift to fall in love with driving. A Swift with the all-new 1.2-liter Z-Series engine for perfect balance of power, comfort and fuel efficiency. With 6 airbags as standard across all variants. Features like Smart Play Pro Plus, rear AC vent and wireless charger. So buckle up. It's time to go Swifting.
2: Get attractive offers up to Rs. 45,000. To know more, visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
3: TNC apply.
0: एक सूचना। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा आज 24 जून को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड नामक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सुअर एवं बकरी पालन की संभावनाएं और लाभ। कार्यक्रम में पशु चिकित्सालय मंगलुटान के वरिष्ठ

चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाहले निनाद साहेबराव विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। दर्शक इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूरभाष संख्या 2447 45 अथवा 2456 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रलोक को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनु मलिक और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म जंग का ये गीत। बोल समीर के हैं, वधुन बनाई है अनु मलिक ने।

हद कर दी आपने। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है आनंद राज आनंद ने। गीत एवं संगीत रचना आनंद राज आनंद की है।

0: समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 में हैं, लीजिए अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: Follow when you can lead. Visit your nearest Nexa showroom today.
1: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
2: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
1: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
2: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
1: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
2: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
1: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
2: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
1: अब हम कर सकते हैं।
2: अब हमें करना होगा।
1: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
2: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
1: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: ഹരിതവാണിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के एक बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। यह दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्य

0: कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asif Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that Union territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations call for stronger cooperation to address the widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. Indian nationals are advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The embassy said Indian citizens are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant and maintain constant situational awareness. It also urged them to regularly monitor the embassy's official website and social media platforms for updates and further advisories. For assistance, the embassy has issued emergency helpline numbers +98912810-9115, +98912810-9109, +98912810-9102, and +98993217-9359. Indian nationals can also contact the embassy through email.

और फिर दोनों खुशी से झूम कर कहने लगे, यानी अपनी माँ के बाजू चूम कर कहने लगे, प्यारी अम्मी जान हमको जल्द समझा दीजिए, किसकी तख्ती ठीक है लिल्लाह फरमा दीजिए। फातिमा जहरा ने तख्ती हाथ में ली जिस घड़ी, प्यार से दोनों के चेहरों पर

क्या कहूँ अब किसकी तख्ती है बुरी, किसकी उम्मीदों की गर्दन पर चलाऊं मैं छुरी। भाई की तारीफ भाई जिस घड़ी सुन पाएगा, मुस्तफा के लाडले नाती का दिल दुख जाएगा। सोच कर ये बात बोली अपने प्यारों से बुतूल, फैसला इसका करेंगे सिर्फ दामाद रसूल। मेरे बच्चों मैं जो कहती हूँ उसी को मान लो, जाओ ये तख्ती दिखाओ अपने अब्बा जान को। इतना सुनकर चल दिए शेरे खुदा के सामने, दौड़े दौड़े दोनों पहुँचे मुर्तजा के सामने। फिर अली शेरे खुदा से भी यही की इल्तिजा, प्यारे अब्बा जान कर दीजिए हमारा फैसला। देखकर तख्ती अली को भी यही आया ख्याल, अपनी नाकामी को सुनकर रो पड़ेगा एक लाल। सोच के इस बात को बोले अली मुश्किल कुशा।

0: जब नबी के सामने तख्ती रखी हसने ने, देखकर तख्ती यही सोचा शहे कौने ने, जब अली ओ फातिमा ने इनका दिल तोड़ा नहीं, फिर मैं कोई फैसला कैसे करूं अपने तई, इसलिए देकर के तख्ती आपने जिब्रील को, ये कहा जिब्रील से ए मेरे नामा बर सुनो, जाओ ये तख्ती खुदा के सामने ले जाओ तुम, और मेरी जानिब से भी अल्लाह को समझाओ तुम, ये मुकदमा है अली हैदर के नूरे ऐन का, मेरे मौला तू ही कर दे फैसला हसनैन का। लेके तख्ती जब खुदा के पास पहुंचे जिब्राइल, इस तरह जिब्रील से कहने लगा रब्बे जलील,
1: जब मेरे दिल भर वो इतना पास है हसनैन।

जन्नत से तुम एक सेब जाकर तोड़ लो और फिर प्यारे नबी के पास जाकर ये कहो, या नबी दोनों की तख्ती पर उछालो सेब को, यानी तुम इस फैसले का जज बना लो सेब को, जिसकी तख्ती पर गिरे ये फल वो तख्ती ठीक है, खुद पता चल जाएगा किसकी लिखाई ठीक है। जब उछाला सेब को प्यारे रसूल अल्लाह ने, सेब ने की गिड़गिड़ा कर।

किसी की हार हो जाऊंगा मैं, हर मुसलमान की नजर में खार हो जाऊंगा मैं। सेब की फरियाद से अरशे बरी हिलने लगा, हर फरिश्ता गम से रो रो कर गले मिलने लगा। देख कर ये रंग मौला को मोहब्बत आ गई, जोश में कौनो मका वाले की रहमत आ गई। फैसला हुक्मे खुदा से यूं बराबर का हुआ, बोल बाला हर तरफ शब्बीर और शब्बर का हुआ।

नजर मिलाएगा क्या कोई मेरे हैदर से, अजल भी डरती है शेरे खुदा के तेवर से। वो अहले काबा है कमजर्फ अहले देर नहीं, जो उनके सामने आएगा उसकी खैर नहीं। बड़े जर्री बड़े रुस्तम बड़े दिलेर है वो, है नाम उनका अली और खुदा के शेर है वो। कि उनके पास ये फौजों की रेल पेल नहीं, अली से जंग मगर औरतों का खेल नहीं। मजाल किसकी है जो मुर्तजा से टकराए, गुरूर जहल से कह दो।

सामना क्या कोई जानिसार करे, है किसकी ताब जो मुश्किल कुशा पे वारे करे। सितम शुआर सब अपना शुआर भूल गए, और पड़ा जो शेर से पाला तो वार भूल गए। न जाने फिर भी कहां तेरा ध्यान बुजदिल है, खुदा के शेर से बचना बहुत ही मुश्किल है। नबी जो फौज के सालार है तो क्या डर है, मदद को है दरे करार है तो क्या डर है। यहीं से परचमे हक को बुलंद होना है, सितम को प्यार का एहसान।

श्रोताओं, एक सूचना। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा आज 24 जून को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड नामक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सुअर एवं बकरी पालन की संभावनाएं और लाभ। कार्यक्रम में पशु चिकित्सालय मंगलोटान के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. लाहले निनाद साहेब राव विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। दर्शक इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूरभाष संख्या 2447 45 अथवा 2456 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, इस समय आप महफिल कवाली के कार्यक्रम के तहत चंद कवालियों का लुत्फ उठा रहे हैं। आज के कवाल हैं जाहिद नाजा कवाल।

अभी आप महफिल कव्वाली कार्यक्रम के तहत चंद कव्वालियों का लुत्फ उठा रहे थे। आज के कव्वाल थे जाहिर नाजा कव्वाल। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सुनीता। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला एसएमएस जिसे हमें भेजा है विम्बरलीगन से डेविड और सोनी ने। ये सुनना चाहते हैं यस बॉस, इस फिल्म का ये गीत, और इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में हम आपके दिल में रहते हैं इस फिल्म का शीर्षक गीत, और इस गाने की फरमाइश की है हमें असम से हितेंद्र दास ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें स्वराज द्वीप से मनीष ने। ये सुनना चाहते हैं जॉली LLB 2। इस फिल्म का ये गीत और इस गीत को गाया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने।

एक सूचना। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा आज 24 जून को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक पेट टॉक बियॉन्ड द बॉर्न नामक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सुअर एवं बकरी पालन की संभावनाएं और लाभ। कार्यक्रम में पशु चिकित्सालय मंगलोटान के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाहली निनाद साहेब राव विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। दर्शक इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूरभाष संख्या 2447 45 अथवा 2456 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अब्दुल्ला, इस फिल्म का ये गीत। और इस गाने की फरमाइश की है हमें दादा बाबू रोड ग्रेहिड झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज़, बेबी चाहत और सदियानी।

आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में कहीं प्यार ना हो जाए, इस फिल्म का शीर्षक गीत। और इस गाने की फरमाइश की है हमें जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, इरशान छिम्पा और पूजा परिहार ने ये सुनना चाहते हैं प्यार ही प्यार इस फिल्म का शीर्षक गीत, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।

0: हमला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने

0: आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने चुके हैं, बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और

0: अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव फोन और फरमाइश फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। आज के इस सफ़र में मैं हूं आपके साथ सुनीता। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें अपना नंबर मैसेज करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474234000। दोस्तों, चलिए मिलते हैं उन तमाम दोस्तों से जो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। हेलो डियर फ्रेंड्स
1: जी, नमस्कार मैडम। चिरमिरी कुरासा
0: जी, इंद्रभान सिंह जी से बात हो रही है हमारी।
1: जी, चिरमिरी कुरासा कॉलेज जिले के लिए छोटी से इंद्रभान सिंह हो रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं इंद्रभान सिंह जी आप?
1: ठीक है मैडम, आप अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ।
0: जी, और इन दिनों क्या कर रहे हैं आप?
1: अभी मैं नौकरी करता हूँ, ड्यूटी में हूँ, ड्यूटी कॉलेज में हूँ।
0: जी जी, तो आप बहुत बिजी हैं, है ना?
1: जी मैडम, अभी तो फुर्सत में हूँ।
0: जी जी जी, तो बता दीजिए सबसे पहले कि आपको कौन सा गीत है जो सुनना चाहते हैं।
1: फिल्म का नाम है चश्मे बद्दू और गीत के बोल है कहाँ से आए बदरा, गायिका हेमंती शुक्ला और यशोदन।
0: जी जी जी, और
1: सबसे पहले गीत आपको दी देता हूँ।
0: जी शुक्रिया।
1: FM विजयपुर आकाशवाणी में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, दोस्तों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके श्रमिक के लिए, विशेषकर साहब को, पूरे भारत राज्य सरकार को, हमने क्रेडिट समाज गिरी को, जुड़े श्रोताओं को, FM विजयपुर आकाशवाणी में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारी को, मैडम खुश आवी की धन्यवाद।
0: तो चलिए सबों के साथ सुनते हैं गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: खुश आवी की मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स जी, हमारी बात हो रही है करण वीर जी से, जो कि हैं जलंधर पंजाब से। हेलो
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
0: जी, हमारी बात हो रही है करण वीर जी से, जो कि हैं जलंधर पंजाब से। कैसे हैं करण वीर जी
1: बिल्कुल
0: आप?
1: ठीक है मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: जी, और क्या करते हैं वैसे आप?
1: हमारी यहाँ सिटी में पेंट की शॉप है,
0: जी, ओके।
1: जो घरों दीवारों को करते हैं, हम घरों को सुंदर बनाते हैं, आप
0: जी
1: दिलों को
0: जी
1: सुंदर बनाते हैं।
0: जी, और कितने सालों से ये काम आप कर रहे हैं वहाँ?
1: ये तो हमारे को तकरीबन 20 साल हो गए करते करते।
0: बहुत साल हो गया है ना जी। और हमारे कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: बिल्कुल जी, जब से न्यूज ऑन ARI ऐप चला है तब से आपसे जुड़े हुए हैं।
0: जी,
1: पहले तो हम लोकल चैनलों से जुड़े हुए थे, जैसे लोकल जिधर हमारे पंजाब के जितने चैनल थे उनसे,
0: जी,
1: अगर किसी को सुनना पड़ता था तो शॉर्ट पे भी जाना पड़ता था।
0: जी,
1: तो अभी तो मोबाइल ऐप के जरिए फिर कोई भी चैनल हम सुन लेते हैं, तो
0: जी
1: किसी के
0: जी
1: चैनल भी पहुँच गए।
0: और काफी दोस्त भी बन चुके होंगे, है ना
1: बिल्कुल
0: आपके?
1: जी, हमारे तो बहुत दोस्त है। हमारे एक ना ग्रुप बना है, हेलो फॉर मैच श्रोता रेडियो का ग्रुप,
0: अच्छा
1: उसमें से आपका नंबर मेरे को भी उसमें से आपका नंबर ये मिला था।
0: अच्छा ओहो,
1: तो उसमें डेली डेली और भी अपने पूरे ऑल इंडिया जितने भी रेडियो स्टेशन है ना आकाशवाणी के, सबके नंबर शेयर होते रहते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए। बताइए, आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: मैडम जी, गीत है, फिल्म का नाम है पेंटर बाबू,
0: जी
1: और गीत के बोल है, कब तलक चम्मा जली श्यामे गम जात ने।
0: जी, और अपने दोस्तों का नाम आप लेना
1: हाँ,
0: चाहेंगे?
1: मेरे दोस्त है लोकेंद्र वर्मा जी, गुणवत राय, गौतम राय, त्रिपुरा से बनास जी, MP से भगवान सिंह जी, तेग चंद जी, तुकाराम जी, और गंगाधर जी, और सभी रेडियो फरमैश, हेलो फरमैश श्रोता रेडियो का ग्रुप के सभी मेंबरों को डेलीगेट रहेगा,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: आपको भी ये डेलीगेट रहेगा,
0: जी
1: आपकी पूरी
0: शुक्रिया
1: टीम को भी ये डेलीगेट
0: जी
1: रहेगा।
0: जी तो चलिए, सबों के साथ सुनते हैं गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मेहरबानी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: जी हेलो, नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है अर्जुन जी से, जो कि हैं सिक्किम से।
1: जी जी
0: जी,
1: बिल्कुल सही है जी।
0: कैसे हैं अर्जुन जी आप?
1: मैं अभी तो ठीक हूँ, सर्दी सर्दी काफी है।
0: अच्छा,
1: आप
0: सर्दी
1: कैसे हो
0: जुकाम पड़ा है जी।
1: जी?
0: और इन दिनों क्या कर रहे हैं आप?
1: ये तो घर पर ही बैठे, पूरा गर्मी बढ़ रहा है ना।
0: जी जी जी
1: रात में बारिश होता है तो दिन में गर्मी
0: गर्मी
1: होता है,
0: पड़ती
1: धूप
0: है। जी
1: रहते
0: जी जी जी जी
1: घर के अंदर
0: जी
1: साफ।
0: और इस गर्मी में आप कौन सा गीत है जो सुनना चाहते हैं?
1: गर्मी में रात देने वाले गीत तो बहुत सारे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी आ रहा है सजल फिल्म से, देखा है पहली बार।
0: जी, और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: सबसे पहले तो आपके लिए
0: जी, शुक्रिया।
1: प्रिया जी, और हमारे लोकेंद्र वर्मा जी है, भगवान सिंह वर्मा जी है, अविनाश तेली जी है, और शारदा प्रसाद प्रजापति जी है, नरेश प्रजापति जी है, और जितने भी सुनने वाले तमाम दोस्त है सभी के लिए सुना।
0: जी, तो चलिए अर्जुन जी, सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा, इस अंतराल की बात भी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। चलिए मिलते हैं अगले दोस्तों से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
3: हेलो
0: जी, हमारी बात हो रही है प्रेमोजीत चक्रवर्ती जी से, जो कि है आसम से।
3: यस यस
0: जी, कैसे हैं आप?
3: मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और अभी तो आकाशवाणी से विजयपुरम प्रोग्राम

0: है
1: जी जी
0: और मैं आसाम से बात कर रहा हूँ।
1: जी जी और क्या करते हैं?
0: पहले आपको नमस्कार
1: जी
0: और
1: जी
0: अभी
1: आपको
0: प्रोग्राम
1: भी
0: सुनने आपको प्यार भरा नमस्कार।
1: जी, हमारी तरफ से भी आपको प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको
1: और
0: धन्यवाद
1: जी जी और क्या करते हैं वैसे आप?
0: मैडम। मैं तो पूजा पाठ करता हूँ।
1: जी
0: मैं
1: जी जी
0: ब्राह्मण परिवार से
1: जी
0: हूँ,
1: जी जी जी
0: इसलिए पूजा पाठ तो मेरा पैसा है।
1: जी जी जी और बताइए, आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो सुनना चाहते हैं आप?
0: आज मैं गाना सुनना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है फुलेर काटे।
1: जी जी
0: गाने का बोल ऐसे कुमार शर्मा जी और अलका याग्निक जी को युगल आवाजों में धीरे
1: जी जी जी
0: धीरे प्यार को बढ़ाना,
1: जी जी बहुत ही खूबसूरत सा गीत है।
0: और ये गाने को पहले तो आपको सुनाना चाहता हूँ
1: जी
0: और मेरे
1: शुक्रिया।
0: साथ और दो चार मित्रों को नाम चाहता हूँ।
1: जी
0: आप
1: जरूर
0: मेरे अनुभूति दीजिए।
1: जी जरूर जरूर
0: पहले तो सुनेंगे आशुतोष देवना जी, अनूप जी और संगीता जी, शिक्षा जी, सत्यम विष्णुकुंड जी
1: जी जी
0: और आसाम से मेरा एक दोस्त बाइकेन मुंडा जी और रमेश पात्र जी सुनेंगे, और नितिन चक्रवर्ती बंगालुरु से, असम से जवाहरलाल वर्मन जी, और अभी जो श्रोता आकाशवाणी थी विजयपुरम सुन रहा है सबके लेकर सुनेंगे, और वरुण सिकंदर और भगवान सिंह परमार
1: जी
0: जी।
1: जी जी तो चलिए,
0: ओके मैम,
1: जी जी जी तो चलिए
0: यू
1: सबक
0: विल
1: के साथ
0: बी
1: सुनते हैं ये
0: फाइन,
1: गीत। जी
0: थैंक यू सो मच,
1: जी
0: बाय बाय।
1: जी जी शुक्रिया।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स. हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार. हमारी बात हो रही है दीपक जी से, जो कि हैं श्री विजयपुरम के निम्बूतला क्षेत्र से.
1: हाँ जी मैडम।
0: जी, कैसे हैं वैसे आप?
1: हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है।
0: जी, और क्या करते हैं वैसे इन दिनों आप?
1: मैं APWD में काम कर रहा हूँ।
0: जी, तो हमारे कार्यक्रम वहाँ पर आप नियमित रूप से सुन पाते हैं?
1: हाँ जी, ये मोबाइल ऐप से सुन लेता हूँ,
0: जी,
1: ऑफिस में बैठ के भी सुन लेता हूँ।
0: और घर पर
1: मेरा
0: भी
1: तो
0: सुन लेते
1: ऑफिस
0: हैं.
1: में
0: जी,
1: गाना चलता है और
0: और काम भी होता
1: मैं
0: है.
1: अपना काम करता रहता हूँ।
0: जी, अच्छा लगा सुनकर. बताइए, आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म है नमक हलाल। गाने का बोल है, रात बाकी बात बाकी,
0: जी
1: होना
0: जी
1: है जो हो जाने दो।
0: जी जी जी और
1: आशा भोसले और बापी लहड़ी का गाया हुआ,
0: जी, ज़रूर.
1: संगीतकार है बापी लहड़ी।
0: और किन के साथ आप ये गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं ये गाना पूरा लंबा है इसलिए किसी का नाम नहीं लूंगा,
0: जी जी
1: आपका साथ मैं सुनना चाहता हूँ,
0: जी
1: गाना
0: शुक्रिया.
1: पूरा सुनना चाहता हूँ।
0: जी, ज़रूर ज़रूर सुनवाएंगे आपको ये गीत.
1: जरूर जरूर।
0: तो चलिए सुनते हैं ये गीत. हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
1: शुक्रिया मैडम।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, अंदाज बदल लेना, आवाज बदल लेना, दुनिया की मोहब्बत में अतवार बदल लेना, मौसम जो नया आए रफ्तार बदल लेना, अगियार वही रखना, अहबाब बदल लेना, रास्ते में अगर मिलना नजरों को झुका लेना, आवाज उसे देना, कतरा के निकल जाना। जी नमस्कार,
0: जी
1: आदाब।
0: बहुत खूब। नमस्कार, हमारी बात हो रही है शैलधर जी से, जो कि हैं श्रीनगर से।
1: जी बिल्कुल सही,
0: और कैसे हैं आप?
1: बस मैं बढ़िया हूँ और आपके प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो के ऐप से सुनता हूँ।
0: जी, आपका
1: जी
0: अंदाज ही
1: तो
0: बहुत निराला है।
1: शुक्रिया।
0: जी, और क्या करते हैं इन दिनों आप? वैसे क्या कर रहे हैं?
1: जी मैं कश्मीर आर्ट के साथ कर रहा हूँ, जो कश्मीरी पश्मीना है
0: जी,
1: मैं उसी के साथ करता हूँ। जी
0: अच्छा, तो बताइए आज किस कार्यक्रम में
1: जी
0: वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल
0: जी, क्या कौन सा गीत है जो, बता दीजिए।
1: जी, फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा, उसका एक बहुत ही नगमा है, ओ साहिबा
0: जी,
1: मिलेंगे तुमसे।
0: जी और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी जो भी इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो सब सुनेंगे
0: जी,
1: हमारे साथ।
0: तो चलिए
1: जी
0: सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: जी नमस्कार बहन जी।
0: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है मंगीलाल जी से, जो कि है मध्य प्रदेश से। कैसे हैं मंगीलाल जी आप?
1: जी, मैं किसान हूँ बहन जी।
0: और कैसे हैं वैसे आप?
1: मैं
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ,
0: जी
1: आपकी
0: जी
1: दुआ से और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ,
0: जी बहुत
1: और मैं
0: अच्छी
1: इस
0: बात
1: बार
0: है।
1: से आशा अभी बढ़िया हूँ।
0: जी, बता दीजिए कि आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो सुनना चाहते हैं आप?
1: मूवी का नाम तो है 9-2-11 और सॉन्ग के बोल हैं, आंखों में क्या जी पहला बादल।
0: जी, और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
1: हाँ बहन जी,
0: जरूर लीजिए।
1: ये सॉन्ग सभी पोर्ट विलियर के इतने भी मित्र हैं ना, सभी सुनता है, उन सभी श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा।
0: जी, शुक्रिया।
1: जी
0: तो चलिए
1: शुक्रिया बहन।
0: सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: को भी धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

सभी सुनने वालों को जय शीला का नमस्कार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम उन गीतों को समर्पित है जिनके शब्द एक जैसे हैं, लेकिन समय और संगीत के साथ उनका अंदाज बदलता गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे सदाबहार गीत से जिसके मुखड़े में ही प्यार की मीठी नोक झोंक छुपी है। कभी इनकार, कभी इकरार और कभी दिल की अनकही बातें, यही तो प्रेम की सबसे खूबसूरत पहचान है। इस गीत में नायक नायिका एक दूसरे से कहते तो हैं कि प्यार नहीं करेंगे, लेकिन दिल है कि उनकी बात मानता ही नहीं।

श्रोताओं, अभी आपने सुना 60 के दशक का वो मधुर गीत, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। समय बदला, संगीत का रंग बदला, प्रस्तुति का अंदाज बदला, लेकिन दिल की भावनाएं वही रहीं। यही कारण है कि वर्षों बाद इसी मुखड़े नाना करते प्यार को एक नए दौर के संगीतकारों ने आधुनिक धुन, तेज लय और नए अंदाज के साथ फिर से सजाया।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ गीत ऐसे हैं जो केवल गीत नहीं बल्कि एक युग की पहचान बन जाते हैं। अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है। प्रेम की निडर अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास और समर्पण का ये स्वर आज भी उतना ही बुलंद सुनाई देता है जितना दशकों पहले सुनाई देता था। ये गीत उस प्रेम की कहानी कहता है जो दुनिया की बंदिशों, परंपराओं और विरोध के सामने भी झुकना नहीं जानता। प्रेम यदि सच्चा हो तो उसे छुपाने की नहीं बल्कि गर्व के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। शायद यही संदेश इस अमर गीत को कालजयी बनाता है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना प्यार किया तो डरना क्या, एक ऐसा गीत जिसने प्रेम को निडरता और आत्मविश्वास की नई पहचान दी। ये गीत अपने दौर में प्रेम की खुली अभिव्यक्ति का प्रतीक बन गया था। दिलचस्प बात यह है कि यही पंक्ति प्यार किया तो डरना क्या वर्षों बाद एक नए अंदाज में फिर सुनाई दी। बदलते समय के साथ संगीत की धुनें बदली, प्रस्तुति बदली, लेकिन प्यार को बेखौफ होकर स्वीकारने का संदेश वही रहा।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, प्रस्तुत है निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिमला मैंने रोकर हमांग इमिजी तक लमक तेलगी मीडियम वेव 438.6 मीटर है 684 किलो हर्ट्ज रमांग एलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्य निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिनका तलोन ही इंगहरा हॉय दहेक सीन हंगरन मैंने चोग महावट करें लेकिन हॉय नेकुन पनाम ही जम्मू मायमंदर द डिकलीपुर एम वी स्ट्रीट आइलैंड इब तेनेर नायता फूल अलांगो चिंगेर न जू मायमंदर द डिकलीपुर इत सट कोई रो तलाब हु न लक ने फिनिक्स पे जट्टी न छावा निब तेनेर नाय सट अलांगो चिंगेर इत सट कोई रो तलाब हु न रांग डिकलीपुर सक मायमंदर मिन गम चोग एल तल करे न जुसरी विजयपुरम जम्मू लिटिल अंडमान हेक चोग MV Bharat Sima Asun Ngenre Nang Chulidil Andaman Ibtanera Naitanai Alango Chingir Ida Hewra Kainro Talapuhu Nelaknya Hedwa Ngach Hawan Ip He Eh Ida Machu Tira Kainro Tahatam Nerang Lidil Andaman Nacusri Vijayapuram Hek Anendre Min MV Bharat Sima Nacu Lidil Andaman Ibtanera Naitaful Alango Chingir Ida Machu Tira Kainro Tahatam Nelaknya Hedwa Ngach Hawan Ibtanera Naisat Alango Chingir Ida Hewra Kainro Talapuhu Nerang Lidil Andaman Nacusri Vijayapuram Ipte nerana hevre anmin hek MV Bharat Sima na julidil andaman ite hevre kain rota lapuhu na leknya headwaf ngach hawa nipte nerana hevre alango chingir ite machutra kain rota hatam na rang lidil andaman na jusri Vijayapuram. Chamu lidil andaman hek takhar nikobar MV Kalikar chu lidil andaman takhar nikobar ipte nerana hevre alango chingir ite sat kain rota lapuhu na leknya headwaf ngach hawa nipte nerana machutra alango chingir ite fern kain rota harap na rang khar nikobar sek lidil andaman anmin ngam Chong El Talagaran Jusri Vijayapuram MV Sentinel. Chu in minute Lalongamin Kunpanamhi if the Neranai Tanai Alango Chingit. Ida Satkan Rota Lapuhu Nalaknya Hadawaf Sir Lidilandaman Kanikobar Chora Teresa Kachal Nankori El Talaga of Nachu Campbell Bay. Ngachavan if the Neranai Hevere Alango Chingit Ita Hevere Kainro Rongti. Talahatam Narang Campbell Bay Sir Nankori Kachal Teresa Chora Kanikobar the Lidilandaman and Mingam Chong El Talakarana Jusri Vijayapuram Chamu Nankori Hek the Campbell Bay Nalanda Chu Nankori the Campbell Bay Ip the Luyana Alango Chingir Itamachu Trakainro the Labuhu Nalaknya Hedwaf Machavan Ip the Ned Ala Abchula Jingir Itahavakainro the Labuhu Narang Campbell Bay Sek Nankori and Mingam Chong El Talakarana Jusri Vijayapuram Anununne Min Kathalon Hi Ingharap
2: तेज बुखार पसीना आना सिर और शरीर में दर्द उल्टी और कमजोरी
3: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं
2: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है
3: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है
2: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें
3: घर और आसपास पानी जमा न होने दें
2: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें
3: अगर बुखार हो तो रक्त की जांच करवाएं
2: अब हम कर सकते हैं
3: अब हमें करना होगा
2: मलेरिया को मिलकर हराना होगा
3: स्वस्थ जीवन अपनाएं मलेरिया को दूर भगाएं
2: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी

हाय डियर फ्रेंड्स, जाने के इन तरीकों से कैसे अद्वितीय बने और दूसरों से अलग दिखे। अलग होना क्यों अच्छा है और महत्वपूर्ण भी। आज के लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ, एक ऐसी दुनिया में जहां समानता और विशिष्टता का मुखौटा लगा हुआ है, वास्तव में अद्वितीय होना विद्रोह का कार्य करना है, अनुरूपता के लहर के खिलाफ विरोध करना है। इस अर्थ में अलग होना जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्तिगत विकास और प्रामाणिक आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है, और नहीं सिर्फ भीड़ में अलग दिखने के लिए एक शानदार वेश धारण करना ही विशिष्टता नहीं है, बल्कि इसके बजाय एक विलक्षण दृष्टिकोण, एक अद्वितीय विश्व दृष्टि का पोषण करना है। अगर आप चाहे तो ये दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए अलग होने के बारे में है। ऐतिहासिक रूप से सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वे नहीं थे जो सिर्फ अलग दिखते थे, वे थे जो अलग तरह से सोचते और काम करते थे। लियोनार्डो डाविंची को ही लीजिए, एक बहुश्रुत व्यक्ति जिसने दूसरों को चकित करने के लिए नहीं बल्कि अपनी अतृप्त जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अपने युग के मानदंडों को चुनौती दी। उनके विशिष्टता प्रशंसा के लिए पहन जाने वाला परिधान नहीं था, यह उनकी अद्वितीय बुद्धि और दृष्टिकोण का स्वाभाविक परिणाम था। दोस्तों, मेरे अपने निजी अनुभवों ने मुझे सिखाया है कि बाहरी मान्यता के लिए विशिष्टता की तलाश करना व्यर्थ है। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla, spice.lamhe.vanilla। दर्शकों के लिए तैयार की गई विशिष्टताएं क्षणभंगुर है, लेकिन जो खुद के लिए विकसित की जाती है वह शाश्वत है। आंकड़े इस धारण को पुष्ट करती है। जर्नल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि जो व्यक्ति व्यक्तिगत प्रामाणिकता का अनुसरण करते हैं, उनके जीवन में संतुष्टि और सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में अब समय आ गया है कि हम दूसरों से अलग होने के साथ ही आकर्षण को त्याग दें। दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, हाउ टू बी यूनिक। इस दुनिया में जहां निरंतर संपर्क के महत्व दिया जाता है, अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। ईमेल और टेक्स्ट के युग में हाथ से पत्र लिखना संवाद करने का एक अनूठा और व्यक्तिगत तरीका हो सकता है। विषय वस्तु से अधिक गहराई से जोड़ने के लिए ई पुस्तकों या आइडिया पुस्तकों के बजाय भौतिक पुस्तकों का चयन करें। हमेशा डिजिटल उपकरणों पर निर्भर रहने के बावजूद कुछ कार्य के लिए कागज के नक्शे, मैनुअल, कैमरा, यहाँ तक कि टाइपराइटर जैसे पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करें। ऐसे शौक अपनाएं जो मुख्य धारा में न हो या व्यापक रूप से लोकप्रिय न हो। एक ऐसे

संसार में जहां अक्सर उनके कार्यों को एक साथ करने की क्षमता की प्रशंसा की जाती है। एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा शॉर्टकट ढूंढने के बजाय कभी कभी लंबा अधिक सुंदर रास्ता चुनें। व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ने के लिए उपहार खरीदने के बजाय उन्हें हाथ से बनाए कुछ गिफ्ट्स दें। वास्तविक जीवन के रिश्ते और अनुभवों के विकसित करने के लिए सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले समय को कम करें। धीमी गति से जीवन जीने का अभ्यास करें। जीवन की धीमी गति को अपनाएं तथा गति या दक्षता की अपेक्षा गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें। पुराने जमाने के हुनर सीखे दोस्तों, ऐसे कौशल सीखे जो आजकल आम नहीं है, जैसे लकड़ी का काम, ऑयल पेंटिंग, एक्रिलिक्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आजकल डिजिटल ज़माने में ये सब ना सिर्फ कंप्यूटर पे हो जाता है, स्क्रीन पे होता है, पर आप फिजिकली कीजिए। डायरी या जर्नल मेंटेन करें और लिखें। केवल डिजिटल नोट्स के बजाय एक भौतिक डायरी या जर्नल रखें। अनोखे अनुभव के लिए कम लोकप्रिय यात्रा या रेयर लोकेशंस चुनें। एक अलग श्रवण अनुभव के लिए विनाइल पर संगीत का आनंद लें। यू कैन लिसन टू ग्रामफोन रिकॉर्ड्स। अपनी खुद की सब्जियां या जड़ी बूटियां उगाने के लिए एक छोटा बगीचा शुरू करें। हमेशा पैसे का उपयोग करने के बजाय वस्तुएं या सेवाओं का व्यापार करें। कुछ नया बनाएं पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वो कला हो, संगीत हो, लेखन हो या रचनात्मक अभिव्यक्ति का कोई अन्य रूप हो, न कि केवल दूसरों द्वारा बनाई गई चीजों का उपभोग करें। पारंपरिक या लोक प्रकृति के नृत्य रूप को सीखें और उनका अभ्यास करें। पारंपरिक फोटोग्राफी की कला की सराहना करने के लिए फिल्म कैमरा से तस्वीर लें। ऐसी भाषा सीखें जो आमतौर पर नहीं सीखी जाती है, जैसे संस्कृत। हार्पसिकॉर्ड या ल्यूट जैसे कम प्रचलित संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीखें। शारीरिक परिरक्षण के इस पारंपरिक रूप को अपनाते हुए शरीर के वजन वाले व्यायाम में शामिल करें। पारंपरिक तरीकों से रोटी पकाने की कला सीखें। विभिन्न अनाजों के साथ प्रयोग करें। अद्वितीय अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण के लिए प्राचीन ग्रंथों या पांडुलिपियों का गहन अध्ययन करें। पक्षियों को देखने और उनके बारे में जानने में समय व्यतीत करें। ये एक ऐसी गतिविधि है जो धैर्य और प्रकृति के साथ जुड़ने को प्रोत्साहित करता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ से दूर प्राकृतिक वातावरण में ध्यान करें। ऐसी क्लासिक फिल्म देखें जो समकालीन मुख्यधारा का हिस्सा नहीं है। रणनीतिक सोच को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से पारंपरिक बोर्ड गेम या शतरंज खेलें। प्राचीन फर्नीचर या वस्तुओं का मौखिक कहानी कहने की कला में निपुणता प्राप्त करें, जो सांस्कृतिक कहानियों को संरक्षित करने और साझा करने का एक सशक्त तरीका है। अपने साथ मौजूद किसी अनोखे कौशल जैसे कि पेपर कटिंग, ओरिगामी, पेंटिंग, म्यूजिक सार्वजनिक स्थानों पर सिखाएं। किसी अजनबी के भोजन या कॉफी का भुगतान चुपके से करें और बिना पहचान चले जाएं। किसी स्थानीय निसर्ग हम में गुमनाम रूप से फूल बेचकर किसी वरिष्ठ नागरिक का दिन खुशनुमा बनाएं। कोई अनूठी वस्तु अपनाएं जो आपकी पहचान बन जाए, जैसे कोई विशिष्ट टोपी या कोई अनोखा आभूषण। अद्वितीय कलाकृतियां बनाने के लिए किसी ऐसे कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए समय समर्पित करें जो आज दुर्लभ या असामान्य है। तो एक अद्वितीय व्यक्ति होने का मतलब किसी क्षणभंगुर प्रकृति का पीछा करना या किसी आदर्श की नकल करना नहीं है। यह अपने चरित्र की बारीकियों, अपने विचारों की खासियतों और अपने कार्यों की सूक्ष्मताओं को अपनाना है। ये अपरंपरागत में प्रतिध्वनि खोजना है और अपरंपरागत में लय खोजना है। तो दोस्तों, यह था आज का लम्हे प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। spice.lamhe.vanilla।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है 4:40। अब सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। 5 बजे कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, तमिल कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। शाम 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम के तहत श्री जगदीश हलदार से की गई बातचीत का विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान। दर्द भरे नगमे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रसारित होगा 6:30 पर। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम, जन सूचनाएं आप सुनेंगे 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का वक्त रहेगा 7:20। 7:30 पर युवानी के तहत कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी। रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरवगान। रात 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सरगम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कल प्रातः एग्री टिप्स कार्यक्रम में 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा काजू का कष्ट। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा साहिल शीर्षक पर। रामचरितमानस गान का समय रहेगा 6:30। 6:40 पर आप सुनेंगे कुछ वतन के गीत। 6:50 पर सुनिए मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएँ। 7:05 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रमों में 8:30 पर कलाकार होंगी सलमा आगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा सुबह 9 बजे। शास्त्र संगीत कार्यक्रम में 9:30 पर आप सुनेंगे KS गोपाल कृष्णा का गायन। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस का वक्त रहेगा सुबह 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे कल दिन के 11 बजे। 11:30 पर आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। तेलुगु कार्यक्रम का प्रसारण होगा दोपहर 12 बजे। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम होगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:10 पर कलाकार होंगे ए हरिहरन। 1:30 पर सुनिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर अपनी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक। 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम।

लम्हे कार्यक्रम का विवरण आप सुनेंगे 4:40 पर। 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। 5 बजे तमिल कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। शाम 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम के तहत डॉक्टर वाई रामाकृष्णा से की गई बातचीत का विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान। महफिले कवाली कार्यक्रम प्रसारित होगा 6:30 पर। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। मौसम की जानकारी जलयानों का यात्रा कार्यक्रम जनसूचनाएं आप सुनेंगे 7:15 पर। ये थे हमारे आज और कल के कुछ शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम में पहले सुनिए बेफिक्री फिल्म का गीत बेनी दयाल की आवाज में। इस गीत के संगीत निर्देशक है विशाल शेखर और बोल है जयदीप सहानी की।

अगला गीत सुनिए मीट ब्रोज फीट अरमान मलिक और तुलसी कुमार की स्वरों में वजह तुम फिल्म से, जिसके संगीतकार हैं मीट ब्रोज और गीतकार हैं कुमार।

राजू सिंह की संगति में सुनिए राज द मिस्ट्री फिल्म का गीत। इस गीत के गायक कलाकार हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल और नीरज श्रीधर, और शब्दकार हैं कुमार के।

0: अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली वणंगम तमिल अमृतम वणक्कम नेयर्गले।

श्रोताओं, अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है किसानों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों एवं बहनों को आंचल का प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितने बड़े काम करते हैं, बल्कि ये है कि आप छोटे काम कितने प्रेम और निष्ठा से करते हैं। और ये विचार है मदर टेरेसा के। कहने का तात्पर्य है किसान साथियों कि सच्ची महानता छोटी चीजों में निहित होती है, जब उन्हें पूरे दिल से किया जाए। उम्मीद करते हैं कि आज के इस नेक विचार के भाव हमारे किसान साथी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और किसान साथियों, आज का प्रश्न है, द्वीपों के लिए उपयुक्त लंबी अवधि की धान की किस्में कौन कौन सी हैं? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, द्वीपों के लिए उपयुक्त लंबी अवधि की धान की किस्में कौन कौन सी हैं? किसान साथियों, ये रहा आज का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए अब आपको मिलवाते हैं महिला पशुपालक चंपा रानी दास जी से। तो चलिए मिलते हैं और सुनते हैं इनसे की गई बातचीत।
4: किसान साथियों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में है न्यू बंडूर गांव की एक महिला पशुपालक चंपा रानी दास। चंपा रानी दास जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
5: नमस्ते मैम।
4: बताइए चंपा रानी दास, आप एक महिला पशुपालक है तो आपके पास कौन कौन से पशु है?
5: मेरे पास गाय है और मुर्गी है और बतख है।
4: अच्छा, तो कितनी गाय होंगी?
5: मेरे पास अभी टोटल 32 गाय है।
4: 32 गाय,
5: 32 गाय है।
4: तो जो गाय आप पालती है वो कहाँ से, आप कैसे 32 गाय को कैसे इम्प्रूव, मतलब जैसे छोटे से लाई होंगी, एक एक आधा गाय से ही अपनी शुरुआत की होंगी ना?
5: मैं पहले एक दूध के लिए, अपने घर के दूध के लिए गाय खरीदी थी जब मैं सुरामी शेल्टर में थी।
4: अच्छा।
5: और 5 साल पहले तब एक गाय खरीदने के बाद जैसे दूध देने लगी तो मेरा अगल बगल वाले बहुत सारा दूध पूछने लगे, मुझे भी दे दो। उस तरह कर करके फिर हम और दो गाय खरीदी। दो गाय खरीदने के बाद मेरा और 4 बच्चा हो गया। एक बच्चा, छोटा वाला बच्चा खरीद के लाई थी
4: जी।
5: 4 बच्चा हो गया, 3 गाय हो गया। फिर वहाँ में रहने का बहुत मुश्किल है, शेल्टर है
4: जी,
5: जगह छोटा है। फिर मेरा घर वंडूर में है तो शेल्टर में ऐसी टेम्पररी के लिए रहती थी
4: जी जी।
5: फिर वहाँ से हम हस्बैंड को बोले चलो हम लोग घर चलते हैं, वहाँ में जाके जमीन वमीन सब है, वहाँ में जाके हम लोग गाय भी पालते हैं। एक्चुअली मैम हम नर्सिंग ट्रेनिंग करी हो, जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग करी हो।
4: अच्छा।
5: फिर मुझे जैसे जॉब नहीं मिला तो कोरोना का टाइम हम प्राइवेट हॉस्पिटल में करती थी तो मुझे थोड़ा तकलीफ तो बोल के हम छोड़ दी, तब जॉब छोड़ दी। तो उसके बाद हम सुनामी शेल्टर में चले गए। जाने के बाद वो एक गाय खरीदने के बाद 3 गाय हो गए एक एक करके, ज़्यादा हो गया। फिर हम वहाँ में रहने का खिलाने का बहुत मुश्किल हो गया, हस्बैंड भी जॉब में है। तो हम लोग बोले चलो हम लोग घर चले।

0: हैं, वहाँ में जाके हम लोग अपना से बिजनेस वहाँ पे शुरू करते हैं। और मुझे जॉब का कोई टेंशन नहीं है, मुझे जॉब करने का कोई होप ही नहीं
1: इंटरेस्ट
0: है,
1: नहीं था।
0: इंटरेस्ट नहीं है। और एक्चुअली मेरा हस्बैंड भी पुलिस में है,
1: अच्छा
0: तो वो बाहर में जॉब अप करना बोलने से मेरे को, और लीव वैकेंसी मिलना बाहर में करना बोलने से मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बच्चे एक है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, फिर मैं अपना घर में आके वहाँ में अपना घर बना के, काउ शेल्टर बना के अपना घर बना के वहाँ में रहना शुरू करी
1: अच्छा
0: अभी।
1: यानी कि आप पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी आप नौकरी की तरफ नहीं गई, अपने गांव में ही, जैसे आपने कहा कि आपके गांव में दूध की मांग थी,
0: बहुत ज़्यादा,
1: लोग जो
0: बहुत
1: है दूध
0: ज़्यादा
1: की मांग करने
0: जी
1: लगे, तो आपका ध्यान उस ओर चला गया
0: जी
1: और आप गाय पालने में
0: वंडोल
1: अपना
0: में
1: इंटरेस्ट
0: आए, अपने
1: दिखाई।
0: गांव में चले गए।
1: बिल्कुल, तो देखिए 32 गाय कोई कम नहीं होता है, तो इनका पालन पोषण, इनका जो खिलाना पिलाना, वो आप कैसे करती है? आपके साथ और कोई भी होगा?
0: जी मेरा दो दादा लोग हैं, मेलन्स का दादा लोग हैं,
1: जी
0: उन
1: जी
0: लोग मेरा बहुत सारा मदद
1: यानी
0: करते
1: पूरे
0: हैं।
1: परिवार के लोग
0: जी
1: मिल करके आप अपने
0: हाँ
1: घर को
0: जी, संभाल के रखे हैं अभी।
1: संभाल के रखी है।
0: मेरा हस्बैंड भी, वो भी बहुत मदद करते हैं, जितना हो सकता मदद करते हैं। और मेरा दादा लोग तो दिन रात मेरा साथ ही रहते हैं। और अपना मैं मुर्गी है, मुर्गी पालन करती हूँ, बतख पालन करती हूँ,
1: जी
0: उसी से मेरा दिन भर, सुबह से सुबह 4 बजे से लेकर रात का 11 बजे, दिन दिन भर इसी तरह मेरा कट जाता है। कोई थकावट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी हो मेरा दिन का काम ऐसे करना ही है,
1: यानी कि बड़े आराम से आप कर
0: बड़े
1: लेती
0: आराम
1: हैं।
0: से कर लेते हैं हम।
1: लेकिन बहुत लोग बोलते हैं ना कि घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है, तो कैसे हम गांव में कृषि की ओर ध्यान दें, पशुपालन की ओर ध्यान दें?
0: नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम,
1: अगर हम करना चाहे
0: हम
1: तो
0: करना चाहते हो सब कुछ कर सकते,
1: कर
0: घर भी
1: सकते हैं।
0: संभाल सकते, हस्बैंड भी संभाल सकते, बच्चे भी संभाल सकते, गाय भी पाल सकते, मुर्गी भी पाल सकते, बाहर का काम भी कर सकते हैं, घर का काम भी कर सब कुछ कर सकते हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही बड़ी बात आपने कही, क्योंकि महिलाओं की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत ज़्यादा होती
0: जी
1: है,
0: मैम,
1: और हम महिलाएं जो है उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते भी हैं।
0: जी मैम,
1: चलिए अब हम आते हैं आपके दोबारा पशुपालन की ओर। जैसे गाय आपने पाला, उसके जो रहने खाने का, वो आप कैसे करती, क्या खिलाती है गायों को ताकि उसे जो अच्छे दूध उत्पादन आपको मिल सके?
0: गाय को हम सुबह चराने लेके जाते हैं, मेरे दादा लोग सुबह चराने लेके 8 बजे जाते, 11 बजे लेके आ जाते, धूप में बाहर उतना ज़्यादा नहीं
1: नहीं
0: रहते,
1: जी
0: 11 बजे तक लेके आ जाते। 11 बजे लेके आने के बाद मेरा जो क्या गेहूं का व्हीट स्ट्रॉ जो होते वो हम मंगा के रखे हैं, व्हीट स्ट्रॉ को अपना गा, मेरा गाय का सबका अलग अलग जगह है खिलाने का,
1: अच्छा
0: बड़ा शेल्टर है, सबका अलग अलग रहने का, खाने का सबका अलग अलग जगह है। तो फिर उन लोगों को जो व्हीट स्ट्रॉ, उनको मेलन से मंगा के वो हम क्या करते, भिगा के रखते, सुबह भिगा के, जैसा घर धोते वही टाइम भिगा देते,
1: जी
0: भिगा देने से अच्छे से फूल जाते, एकदम सॉफ्ट हो जाता, एकदम फूल जाता। फिर जैसा गाय 11 बजे लेके आ जाते घर में, लेके आने के बाद उनमें दाना पानी सब मिक्स करके, उस स्ट्रॉ का साथ मिक्स करके अपना अपना जगह में, उन लोग चले जाने से उन लोग अपना अपना अपना अपना नाम बुला के चले जाने से, उन लोग अपना अपना जगह में जाके खड़े हो जाते। तो बांध के उन लोग को बस 11 बजे से लेके 3 बजे उन लोग खाना पीना रेस्ट वही घर में ही है।
1: अच्छा, ये तो खिलाने
0: फिर
1: पिलाने की बात हुई, उनके रहने का की क्या व्यवस्था है?
0: उनका शेल्टर है
1: अच्छा शेल्टर बनाया है।
0: जी,
1: साफ सफाई का कितना ध्यान रखती हैं आप?
0: साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं मैम, हम सुबह एक बार धोते हैं, 5 बजे से लेके एक बार धोते हैं, फिर शाम को एक बार धोते हैं। जैसे सुबह छोड़ देते हैं गाय, छोड़ के तो
1: जी
0: हम लोग दूध दूध निकालते, दूध निकालने में जो दादा, एक दादा सारा घर सफाई करके गोबर वोबर फेंक के सारा घर को पूरा धो देते हैं। धोने के बाद फिर हम लोग दूध दूध निकालना हो जाते हैं, उन लोग एक जन घास काटने चले जाते हैं, एक जन घर का बाकी सब जो काम है, बच्चे उच्चे का संभालना वो सब कर लेते हैं, करके फिर उन लोग नाश्ता पानी करके 8 बजे उन लोग निकल जाते हैं गाय को चढ़ाने के लिए, चढ़ा के फिर 11 बजे लेके आ जाते हैं। 11 बजे लेके आके फिर उन लोग घर में जो दाना पानी, जो व्हीट स्ट्रॉ जब दिए हैं उन लोग खाते, तो कितना
1: जी
0: धूप में, जो बाहर में उतना ज़्यादा घास नहीं है ना, घर में भी खिलाना होता है। फिर 3 बजे तो उस लोग घर में रेस्ट करते हैं, फिर 3 बजे शाम का दूध निकालते हैं, 3 से 5 बजे शाम का दूध निकालते हैं, फिर और आधा घंटा रेस्ट है, फिर 5:30-6 बजे उन लोग फिर से चराने लेके जाते हैं शाम को,
1: अच्छा,
0: फिर 8 बजे घर में लेके आ जाते हैं।
1: तो कुल कितना दूध उत्पादन होता होगा?
0: मेरा अभी 45 to 50 लीटर पर डे होते हैं,
1: अच्छा, पर डे 45 से 50 लीटर।
0: 50 जी।
1: क्या लीटर भाव दूध बेचते हैं आप वंडूर
0: हम
1: से?
0: तो होलसेल में देते हैं मैम, तो इसलिए 70 करके पर लीटर देते हैं
1: अच्छा, तो लोग घरों से आकर ले जाते हैं जो
0: जी
1: होलसेल में
0: जी
1: लेते
0: जी
1: हैं,
0: घरों से आके लेके लेके
1: तो
0: जाते हैं।
1: पूरे 45 और 50 लीटर्स आप वही होलसेल में
0: हाँ
1: दे देती
0: होलसेल
1: हैं?
0: में रेट में देते हैं,
1: आपके गांव में भी तो ज़रूरत
0: हाँ
1: पड़ती
0: गांव
1: होगी।
0: में जिसका ज़रूरत है उन लोग घर से आके लेके जाते हैं।
1: तो यानी कि आप मेहनत करती है, उसका मुनाफा आपको मिल

0: जी मैम,
1: और आप इस काम से बेहद खुश भी हैं।
0: बहुत खुश है।
1: बहुत खुश है। चलिए चंपा रानी दास जी, अब हम मुर्गी पालन पर आते हैं। कितनी मुर्गियाँ हैं?
0: मुर्गियाँ अभी 150-200 तक मुर्गी है।
1: अच्छा
0: अभी बीच में बीमारी लगा तो मेरा मुर्गी बहुत सारा चले गए।
1: अच्छा तो किस तरह की बीमारियाँ मुर्गियों पर लगती है और उसका जो जो उपचार है वो आप कैसे करती हैं?
0: वो हम जैसी मुर्गी को जैसा बीमारी लगना शुरू होता है, मुर्गी के एक जैसे कि हम लोग मुर्गी ठीक से दाना पानी नहीं खाते,
1: जी।
0: एक रेड रेड वाला और सफ़ेद वाला उन लोग लैट्रिन करते हैं, तभी पता चलता है कि मुर्गी बीमार
1: बीमार
0: लगा।
1: है।
0: जी फिर हम लोग जाके वो वेटनरी वाले से हम लोग से दवाई लेके आ जाते, जितना होता उन लोग उस लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। फिर जो बचता है बचता है, जिन्हें बचता है क्या कर सकते हैं। और
1: बिल्कुल। तो उसे एक अंडा,
0: अंडा
1: आपको
0: उत्पादन के लिए जी,
1: कितना अंडा आपको मिल जाता होगा?
0: अंडा भी पर डे मेरे को 40-45 तक हो जाता है।
1: अच्छा तो अंडा जो है, अंडे का क्या भाव है आपके वंडूर में?
0: अंडे अभी 18 करके पर डे,
1: अठारह
0: एक
1: का?
0: अंडा 18 करके होता है।
1: अच्छा तो वो भी आप बेच देती हैं।
0: जी
1: मुर्गियों में जो टीकाकरण की बात आती है, तो टीकाकरण आप समय समय पर करती
0: जी
1: हैं?
0: जी जब बच्चा रहता है, जब बच्चा लेके आते हैं, नया बच्चा जब खरीद के लेके आते हैं, तो उन लोग 3 डोज रहते हैं टीकाकरण का, फर्स्ट
1: अच्छा।
0: डे, 7 डे और 21 डेज में 3 टीकाकरण रहते
1: इन
0: हैं।
1: बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना,
0: बहुत
1: क्योंकि
0: जरूरी
1: जब तक
0: है,
1: हम टीकाकरण नहीं
0: नहीं
1: करेंगे समय
0: होते।
1: पर, मुर्गियों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम कैसे उनसे उत्पादन लेंगे?
0: हाँ जी,
1: ये तो रही मुर्गी पालन की बात। अब आते हैं बकरी पालन पर,
0: बतख, बकरी नहीं है मैम,
1: बतख
0: बतख
1: पालन पर।
0: बतख पालन,
1: बतख कितनी कितने
0: बतख
1: बतख?
0: मेरा 40-50-40 तक होगा।
1: अच्छा तो बतख का भी जैसे मुर्गियों का देखभाल होता है, उसी तरह बतख का भी
0: उसी तरह एक ही साथी में
1: एक
0: रहते
1: ही
0: हैं,
1: साथ ही
0: एक ही
1: रखते
0: साथ ही रहते
1: हैं?
0: हैं
1: जी।
0: बतख का भी एक ही
1: बतख
0: साथ।
1: को भी वही दाना दिया जाता है?
0: हाँ, गेहूँ और दाना, चावल वावल जो वही दाना देते हैं। बतख भी हम अंडा के लिए रखे हैं, सेल के लिए नहीं रखी है, अंडा
1: सेल
0: के
1: के
0: लिए।
1: लिए। अच्छा
0: अंडा
1: बतख का अंडा क्या भाव होता होगा?
0: बतख का 15 रुपीज़ पर।
1: ₹15 पर। वो भी आराम से आपके वहाँ
0: हाँ
1: बिक
0: जी,
1: जाता है,
0: आराम से सेल हो जाता है।
1: यानी कुल मिलाकर के आप अब अच्छी तरह से अपने काम कर रही हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं। चंपा रानी दास जी, देखिए पशुपालन करना छोटी बात नहीं होती, और आपके पास काफ़ी मात्रा में मुर्गियां हैं, बत्तख है, और गाय भी आप पालती हैं। तो इन सबको जो कभी कोई बीमार हो जाता है, या कभी कोई जैसे गांव में कोई रोग फैल जाता है, तो आपके जो पंचायत है उनसे आपको सुविधाएं मिलती हैं?
0: जी
1: वेटनरी
0: जी
1: से लोग आपके पास आते
0: जी
1: हैं?
0: जी बहुत सारा मदद मिलता है उन लोगों को। जैसे हम खबर देते हैं जी, बहुत सर इस तरह हुआ है, उन लोग बोलते हैं, हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं, फिर दवाई साथ में लेके आ जाते हैं।
1: अच्छा
0: उसमें कौन सा
1: दवा
0: दवाई है,
1: इत्यादि आपको वहाँ से मिल जाता है
0: हाँ
1: आराम से?
0: आसानी से मिल जाता है। हम लोग डॉक्टर सर तो बहुत ही अच्छे हैं, कुछ भी
1: अच्छा
0: खबर होने से उन लोग घर में आके ट्रीटमेंट करके जाते हैं। जैसे गाय का कोई प्रॉब्लम हो तो उन लोग समय समय में आके उन लोग टीकाकरण, वैक्सीनेशन, फिर
1: सब
0: अब
1: करते हैं।
0: हाँ डीवॉर्मिंग, सब कुछ घर में आके करके करके जाते हैं। 6 महीने में एक बार टैगिंग, फिर डीवॉर्मिंग और टीकाकरण, सब 6 महीने में एक बार करके जाते हैं।
1: अच्छा तो यानी आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है,
0: जी जी
1: यानी कि
0: कोई
1: आपकी पूरी मदद
0: जी
1: वेटनरी
0: बहुत सारे मदद
1: डिपार्टमेंट
0: करते
1: से
0: हैं।
1: मिल
0: हाँ
1: रहा
0: जी,
1: है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप तमाम बहनों को, काफ़ी महिलाएं हैं जो आज भी घर पर ही बैठी हैं, कोई कार्य नहीं कर रही है, उनको क्या कहना चाहेंगी?
0: उनसे मेरा यही कहना है कि उन लोग भी मेहनत करना सीखें,
1: जी
0: मेहनत का फल एक दिन न दिन मिलेगा। हम भी
1: बिल्कुल।
0: बहुत मेहनत करी, मेहनत करने के बाद ही आज हम यही मुकाम में पहुंची है। मैं पहले पहले मेरा 10-12 गाय को हम अकेला चढ़ाने लेके जाती थी शाम को,
1: अच्छा
0: अकेला चढ़ा, मेरा कोई लेबर नहीं था, सारा देखभाल हम अकेले करती थी। आज जाके मेरे पास 2 लेबर है, उन लोग का रहने का खाने का सारा इंतजाम हम करके रखी है। आज मेरा जाके मैं जब 10-12 गाय से, मेरा आज मेरा 32 गाय है, तो ये मेरा मेहनत के फल है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत करने से ही तो हम आगे बढ़ेंगे,
0: जी
1: और मेहनत का फल मीठा होता है, आज आपको पता चल रहा होगा ना।
0: जी मैम,
1: और आपने कहा कि आपके परिवार का पूरा सहयोग आपको है,
0: जी मैम,
1: तो इसी तरह से अगर हमारी महिलाएं अपने घर पर ही छोटे मोटे कार्य,
0: छोटे मोटे
1: जैसे
0: काम करते
1: चार
0: हैं।
1: पांच मुर्गियां रख ले, या पांच चार
0: उन
1: पांच
0: लोग
1: बत्तख
0: को तो
1: पाल ले,
0: अंडे खरीदने का बाहर से ज़रूरत ही नहीं
1: जरूरत
0: होता
1: नहीं,
0: है
1: अपने
0: ना,
1: घर के
0: घर के
1: जो
0: अंडे जो
1: जी
0: देसी मुर्गे के अंडे घर घर में ही आप खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं, बाहर जाने का
1: अब
0: ज़रूरत ही
1: जाने की
0: नहीं।
1: जरूरत नहीं है, खरीदना नहीं पड़ेगा,
0: जी
1: अपने घर के खर्च को बड़े आराम से निकाल
0: जी
1: सकती है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही तमाम महिलाओं से। चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगी?
0: अभी तो मेरा एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा गाय अभी चढ़ाने का जगह थोड़ा कम हो गया,
1: अच्छा
0: क्योंकि बहुत सारा जगह बुक हो, क्योंकि सब्जी उब्जी करते हैं बहुत जन, और जो बहुत जन को पूरा बाउंड्री करके रखे हो, सब जगह गाय चढ़ाने नहीं देते हैं।

0: यही कोशिश करते हैं, जो जिसका जो ज़मीन ज़मीन जिन लोग सब्जी उब्जी करते हैं उनका अपना ज़मीन हम लीज में लेके वहाँ में घास उगाने का कोशिश करते हैं।
1: अच्छा
0: गांव वाले में जो बहुत मदद करते, बहुत सारा मदद करते, कोई कभी कुछ, कोई भी मतलब घर वाले बाहर वाले कोई भी मुझे कोई कभी मेरे को मतलब उससे बुरी नज़र से नहीं देखते और बुरी बुरी बात भी नहीं करते गाय के बारे में। गांव में कोई भी किसी के भी दूध का ज़रूरत हो, गोबर का ज़रूरत हो, कुछ चीज़ का भी ज़रूरत हो, मेरे घर से हमेशा मिलता है मेरे से
1: यानी कि आप अभी घास, किसी ज़मीन को लेकर के घास
0: घास
1: उगाने के
0: उगाने
1: बारे
0: की
1: में
0: कुछ
1: सोच रही
0: चीज़
1: हैं,
0: सोच
1: तो
0: रही
1: अपने
0: हैं।
1: पंचायत से आपने कभी पूछा?
0: नहीं, पंचायत से भी पूछे नहीं, क्योंकि पंचायत के अंडर में ज़मीन है, वो कि पर्सनल ज़मीन है
1: सबका
0: ना।
1: अपना
0: हाँ, अपना
1: ज़मीन
0: अपना
1: है,
0: ज़मीन है,
1: बिल्कुल।
0: तो उनका अभी वही एक
1: यानी कि
0: ज़मीन
1: चराने की जो जगह है वो कम पड़ रही
0: कम
1: है।
0: पड़ रही है अभी।
1: अच्छा,
0: गाय दिन दिन मेरा गाय
1: ज़्यादा हो
0: ज़्यादा
1: रहा
0: होते
1: है,
0: हैं ना, चढ़ाने का जगह कम पड़ रहा है।
1: कम पड़ रहा है। चलिए, आपकी जो बातें हैं हम समझते हैं कि आपके गांववासी सुन रहे होंगे और किसी तरह से आपकी मदद ज़रूर करेंगे। चंपा रानी दास जी, आज आप कार्यक्रम में आई, इतनी सारी बातें हमसे साझा किए, अपनी तमाम बहनों को अपने बारे में आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत

0: अच्छा,
1: गाय दिन दिन मेरा गाय ज्यादा होते हैं ना, चढ़ाने का जगह कम पड़ रहा
0: है, कम पड़ रहा है। चलिए, आपकी जो बातें हैं हम समझते हैं कि आपके गांववासी सुन रहे होंगे और किसी तरह से आपकी मदद ज़रूर करेंगे। चंपा रानी दास जी, आज आप कार्यक्रम में आई, इतनी सारी बातें हमसे साझा किए, अपनी तमाम बहनों को अपने बारे में आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।
2: किसान साथियों, अभी आप चंपा रानी दास जी से की गई बातचीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपने कई बातें जानी होंगी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
3: अरे वाह मालिक, तेरा

वैसे किसान साथियों, योग को अगर हम अपनी जीवन शैली में शामिल कर लें तो ये हमारे स्वास्थ्य को ही बेहतर बनाता है। तो आज हम योग अभ्यासों द्वारा जोड़ों का स्वास्थ्य बनाए रखना, इस विषय से संबंधित जानकारी देंगे। तो लीजिए सुनिए ये जानकारी। आज हम बातें करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जोड़ों का स्वास्थ्य। हमारे शरीर में सैकड़ों जोड़ हैं और इन्हीं की वजह से हम चल पाते हैं, खेतों में काम कर पाते हैं, घर गृहस्थी संभाल पाते हैं और रोज़मर्रा की गतिविधियां आसानी से कर पाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने, गलत खान पान, भारी काम, तनाव और व्यायाम की कमी के कारण ये जोड़ अकड़ने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं और कई बार सूजन भी आ जाती है। ऐसे में एक उपाय है जो सरल भी है।

0: व्यवस्था भी है और पूरी तरह प्राकृतिक भी है, और वह है योग। योग केवल शरीर को मोड़ने तोड़ने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे जोड़ों में नई ऊर्जा, नई लचक और नई शक्ति भर देता है। जब हम नियमित रूप से योगा करते हैं तो शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है और जोड़ों में जमा हुई जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है। कई बार तो वर्षों पुराना दर्द भी योग से ठीक हो जाता है। योग के कुछ आसन ऐसे हैं जो विशेष रूप से जोड़ों के लिए वरदान माने जाते हैं, जैसे ताड़ासन जो रीढ़ और घुटनों को मजबूती देता है, वृक्षासन जो कुल्हों और पैरों में संतुलन लाता है, पवन मुक्तासन जो गैस, सूजन और जकड़न को कम करता है, भुजंगासन जो कंधों और कमर के जोड़ खोलता है, और सुखासन में बैठकर किया गया प्राणायाम जो मन को शांत करता है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है। योग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे उम्र 20 हो या 70। बस शुरुआत धीरे धीरे करनी होती है। सुबह का समय योग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि सुबह संभव न हो तो दिन के किसी भी शांत समय में इसे किया जा सकता है। योग करते समय शरीर को जोर से खींचने की आवश्यकता नहीं होती। जितना शरीर सहजता से कर सके उतना ही पर्याप्त है। जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतें भी बहुत मदद करती हैं, जैसे हल्की सैर करना, गुनगुने पानी से स्नान करना, तिल या सरसों के तेल से हल्की मालिश करना और भोजन में कैल्शियम तथा विटामिन डी का ध्यान रखना। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने से बचें और बीच बीच में शरीर को थोड़ा हिलाते डुलाते रहें। किसान भाइयों और बहनों, योग कोई दवा नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यदि आप रोज 15 से 20 मिनट भी जोड़ों के लिए योग करें तो शरीर हल्का लगेगा, दर्द कम होगा और काम करने की क्षमता बढ़ेगी। जोड़ों का स्वास्थ्य केवल दवाओं से नहीं बल्कि नियमित अभ्यास और सही आदतों से बनता है। किसान साथियों, अभी आप योग अभ्यासों द्वारा जोड़ों का स्वास्थ्य बनाए रखना इसी संदर्भ में जानकारी सुन रहे थे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे हैं?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान साथियों, आइए अब आपको और एक जानकारी दे देते हैं। जानकारी का विषय है नींबू घास की खेती। किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करते हैं नींबू घास के संदर्भ में। जी हाँ, नींबू घास को आंगन के पिछवाड़े, बाड़ों व बाग बगीचों में उगाया जा सकता है। इसका प्रयोग अदरक की जगह सर्दी जुकाम, खांसी से सामयिक छुटकारा दिलवाने के लिए, चाय बनाने में आदि में होता है, इसलिए इसे अदरक घास भी कहते हैं। व्यापक रोपाई बारिश के दिनों में की जाती है। नींबू घास एक बहुवर्षीय पत्तियों से आच्छादित सुगंधित वानस्पतिक शाक है। जहां तक नींबू घास के लिए जलवायु का सवाल है तो इसे उष्ण सम शीतोष्ण व सर्दी वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। हमारे इन द्वीपों की गर्म व आर्द्र जलवायु, पर्याप्त धूप और पूरे वर्ष समान रूप से वितरित बारिश जो कि औसतन 3000 मिलीमीटर होती है, नींबू घास के लिए आदर्श मानी जाती है। नींबू घास को बीज द्वारा नर्सरी में पौध बनाकर अथवा पुरानी फसलों की जड़दार कलमों, जिसे कि हम स्लिप कहते हैं, इनका प्रयोग कर खेतों में लगा सकते हैं। प्रायः इसे जड़दार कलमों द्वारा ही उगाया जाता है। स्लिप के लिए पौधे के पुराने जड़ों को उखाड़ कर एक एक स्लिप अलग की जाती है।

होती है। जहाँ तक पौधे से पौधे और कतार से कतार के बीच की दूरी का सवाल है, तो आमतौर पर पौधे से पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर व कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। सामान्यतः नींबू घास की रोपाई वर्षा ऋतु में होती है। सिंचाई की सुविधा होने पर इसे हम पहले भी लगा सकते हैं। एक बार फसल स्थापित हो जाने के बाद नींबू घास की फसल से हम 5 वर्ष तक उत्पादन ले सकते हैं। बीजों के बोने या रोपाई के पूर्व खेत में 4 से 6 टन कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। सामान्य मिट्टी में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस व 16 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति एकड़ होती है। फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा रोपाई के समय दी जाती है तथा शेष नाइट्रोजन प्रति कटाई पर बराबर बराबर मात्रा में प्रयोग में लाते हैं। क्योंकि इसे हम वर्षा ऋतु में लगाते हैं, इसलिए खेत में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या बनती है। फसल स्थापित होने की पहली अवस्था पर 45 दिन में निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए 60 ग्राम डाइथेरॉन या 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफीन नामक शाकनाशियों से प्रति एकड़ उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक कटाई के पश्चात निराई गुड़ाई करने से फसल अच्छी होती है। किसान भाइयों, रोपाई के 90 से 100 दिन बाद प्रथम कटाई ली जाती है। मिट्टी की उर्वरकता तथा वृद्धि के अनुसार बाद की कटाइयां 60 से 75 दिन के अंतराल पर की जा सकती है। नींबू घास को भूमि की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई से लगातार 4 से 5 वर्षों तक काटा जा सकता है। नींबू घास से जो तेल मिलता है, इसका बहुत उपयोग होता है। सुगंधित तेल का उपयोग साबुन, सिर के तेल, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, टॉफी उद्योग, पेय पदार्थों, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फार्मास्यूटिकल उत्पादों आदि में किया जाता है। इसके रासायनिक संगठनों का उपयोग विटामिन ए बनाने में होता है। लोक वनस्पति के रूप में इसकी पत्तियों का लेप जानवरों को गैस की बीमारी से छुटकारा दिलाने में लाभदायी माना जाता है। किसान साथियों, अभी आप जानकारी सुन रहे थे। जानकारी का विषय था नींबू घास की खेती। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था द्वीपों के लिए उपयुक्त लंबी अवधि की धान की किस्में कौन कौन सी हैं, और इस प्रश्न का उत्तर है द्वीपों के लिए उपयुक्त लंबी अवधि की धान की किस्में हैं कैरी धान 8 और कैरी धान 9। ये दोनों किस्में द्वीपों की प्रचलित 8 नंबर धान की सुधरी किस्में हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों को इस बात की जानकारी थी, और यदि नहीं तो प्रश्नोत्तर के माध्यम आपने इस बात की भी जानकारी हासिल कर ली होगी। इसी के साथ ही हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ चुके हैं। हम आपसे अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल और अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 6:30 होने को है। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे।

अनजान के शब्दों को सुरों में पिरोया है बप्पी लहरी ने गोला बारूद फिल्म के लिए। चलिए सुनते हैं ये गीत पंकज उदास, मोहम्मद अजीज व साथियों की आवाज़ों में।

अब सुनिए दो दिलों का संगम फिल्म से अगला गीत। इस गीत के संगीतकार हैं मिलिंद सागर, बोल हैं फैज अनवर के, गायक कलाकार हैं अनुराधा पोडवाल और विनोद राठौड़।

श्रोताओं, पेश है फिल्म दयावान का गीत मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में। इस गीत की रचना की है इंदिवर ने और संगति है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

चलिए अब बढ़ते हैं अगली गीत की ओर। फिल्म प्रहार के गाने में शोभा गुरु के स्वर हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगति है और बोल है मंगेश कुलकर्णी की।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए

0: हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। शाम 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम के तहत डॉक्टर वाई रामकृष्णा से की गई बातचीत का विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान। महफिले कवाली कार्यक्रम प्रसारित होगा 6:30 पर। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम, जन सूचनाएँ आप सुनेंगे 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवानी के तहत कार्यक्रम होगा पत्रिका युवा संसार। रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। रात 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय होगा जो हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे कल के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए एक आवश्यक जनसूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजा जा सकता है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जनसूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021।
2: नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक मिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
3: जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मुख्य समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ईरान समर्थित गुटों की आतंकी गतिविधियां समाप्त हुए बिना पश्चिम एशिया में शांति संभव नहीं है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा दिवस पर डिजिटल और नागरिक हितैषी पहलों की उपलब्धियां बताई। खेत बचाओ अभियान के तहत रंगत क्षेत्रों के किसानों को सतत कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया गया। और दक्षिण अंडमान में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मादक पदार्थों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने इन खबरों को खारिज किया कि अमेरिका ईरान के लिए 300 अरब डॉलर के प्रस्तावित पुनर्निर्माण कोष के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों से धन जुटाएगा। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। यह दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही है। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के सतत अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन द्वारा आज शहीद द्वीप के नीलकेंद्र गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सरकारी राजस्व भूमि पर किए गए अवैध कब्जे और अनाधिकृत वृक्षारोपण को चिन्हित कर हटाया गया। इस अभियान में लगभग 1000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर पुनः सरकारी खाता में दर्ज कराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि का अनाधिकृत उपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने दोहराया है कि अतिक्रमण के मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जा रही है और दोषियों के विरुद्ध संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अतिक्रमण की सूचना देने की भी अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, खेत बचाओ अभियान और बैठक। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। ICARKVK निबुडेरा द्वारा खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए

22 से 23 जून तक रंगत ब्लॉक के निम्बूतला और धर्मापुर गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम UTATMA और कृषि विभाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को टिकाऊ कृषि तकनीकों के बारे में जागरूक करना था। इस दौरान किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व, वर्मी कंपोस्ट एवं कंपोस्ट के माध्यम से समन्वित पोषक प्रबंधन, जैव उर्वरकों से बीज उपचार, वैज्ञानिक धान उत्पादन तकनीक, समेकित कीट प्रबंधन तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने जलवायु अनुकूल खेती तथा इनपुट के प्रभावी उपयोग पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया। इसमें कुल 86 किसानों ने भाग लिया। नशा मुक्ति जागरूकता सप्ताह के तहत दक्षिण अंडमान जिले में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। इसी क्रम में कल दक्षिण अंडमान जिला नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की बैठक जिला मजिस्ट्रेट पल्लवी सरकार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले में बढ़ती नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, सतत प्रयास तथा बहुहितधारक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित विभागों को आपसी सहयोग बढ़ाने, सूचना एवं खुफिया जानकारी को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। आम जनता से भी मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी सूचना मानस हेल्पलाइन 1933 पर देने की अपील की गई। मत्स्य पालन विभाग केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम मत्स्य पालन इनपुट की आपूर्ति आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं लागू कर रहा है। गैर जनजातीय श्रेणी के लिए 50% और जनजातीय श्रेणी के लिए 75% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को द्वीप समूह का मछुआरा या जनजाति, उनके पास पंजीकृत गैर मोटरीकृत या मोटरीकृत मछली पकड़ने वाली नाव, साथ ही वर्तमान वर्ष सहित लगातार 2 वर्षों का वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए वर्ष 2026-27 के दौरान आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं खरीदने के इच्छुक नगरपालिका और जनजातीय क्षेत्रों के मछुआरों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन फॉर्म और विस्तृत नियम व शर्तें मत्स्य पालन निदेशालय, क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालयों और नजदीकी मत्स्य उपकेंद्रों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन 30 जून तक मत्स्य क्षेत्रीय कार्यालय या उपकेंद्र में जमा किए जा सकते हैं। ग्रामीण संपर्क व्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में ग्राम पंचायत मनारघाट में 2 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष पी उमर ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में फ्रारगंज प्रखंड की खंड विकास अधिकारी ललिता तिग्गा, ग्राम पंचायत मनारघाट के उप प्रधान APनौफल, पंचायत प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। पहले कार्यक्रम के तहत मलापुरम में मुख्य सड़क से हनीफा हाउस तक नव निर्मित ग्रामीण सड़क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि नई सड़क के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने कालाटांग स्थित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर में सौंदर्यकरण कार्य एवं शेड का उद्घाटन किया। यह शेड मिश्रित कचरे के वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ईरान समर्थित गुटों की आतंकी गतिविधियां समाप्त हुए बिना पश्चिम एशिया में शांति संभव नहीं है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा दिवस पर डिजिटल और नागरिक हितैषी पहलों की उपलब्धियां बताई। खेत बचाओ अभियान के तहत रंगत क्षेत्रों के किसानों को सतत कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया गया। और दक्षिण अंडमान में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मादक पदार्थों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी और जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए जलयानों का

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारत सीमा कल सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान की ओर प्रस्थान करेगा और उसकी वापसी उसी दिन रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान कार निकोबार चावरा तरेसा कचाल और ननकौरी होते हुए कल सवेरे 7 बजे एमवी सेंटिनल श्री विजयपुरम से कैमल बे की ओर प्रस्थान करेगा और जलयान की वापसी रविवार रात 8:30 पर कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रंगत होते हुए स्वराज द्वीप एवं लॉन्ग आइलैंड के लिए प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से स्वराज द्वीप एवं लॉन्ग आइलैंड होते हुए श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगी। शहीद द्वीप के लिए एमवी रानी लक्ष्मी कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगी। जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से विजयपुरम की ओर वापसी करेगा। एमवी जॉली बॉय कल सवेरे 6:15 पर स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और उसकी वापसी उसी दिन सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज कल पूर्वाह्न 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम की ओर वापसी करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा। एमवी रानी चंगा कल 25 तारीख को 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप की ओर रवाना होगा। जलयान उसी दिन दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और उसकी वापसी उसी दिन 3:30 पर दोपहर में शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए छूटेगा। उसकी वापसी उसी दिन 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप की यात्रा पर निकलेगा और जलयान की वापसी दूसरे दिन 26 तारीख को शाम 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

में मिशन कश्मीर फिल्म का गीत, जिसके संगीत निर्देशक है शंकर एहसान लॉय और बोल है समीर के।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। पहले सुनिए शंकर महादेवन व साथियों की आवाज़।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आज 24 जून है और आज के दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान साधक और प्रख्यात गायक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की जयंती है। उनका जन्म 24 जून 1897 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे महान संगीताचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे और अपनी भावपूर्ण गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रस्तुतियों में संगीत के साथ साथ भावों की गहरी अभिव्यक्ति भी दिखाई देती थी। उन्होंने संगीत शिक्षा के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अनेक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया। उन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे सम्मान प्राप्त हुए। उनकी जयंती हमें भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा को समझने और उसके संरक्षण का आदेश देती है। दोस्तों, इसके साथ ही आज ही के दिन भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी की पुण्यतिथि भी है। उनका निधन 24 जून 1980 को हुआ था। वीवी गिरी का पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी था और वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सेनानी, श्रमिक हितों के समर्थक तथा कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किए और देश के श्रम आंदोलन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारत के उपराष्ट्रपति तथा बाद में राष्ट्रपति भी बने। सार्वजनिक जीवन में उनकी सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा की भावना प्रेरणादायक है। वर्ष 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी पुण्यतिथि पर राष्ट्र उनके योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दोस्तों, आज बुधवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

दोस्तों, गुमनाम नगर एक छोटा लेकिन खूबसूरत शहर था, जहाँ सुबह की हवाएं पेड़ों से बातें करती थी और शामें सुनहरे रंगों में ढल जाती थी। इसी शहर के प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ता था शौर्य। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी असली पहचान क्रिकेट के मैदान पर उसके शानदार खेल और उसकी कविताओं से थी। अपने शांत स्वभाव और सादगी के कारण वह सभी का प्रिय था। उसी कॉलेज में पढ़ती थी सोनी। वह कॉलेज की टॉपर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे परिसर में होती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका विनम्र स्वभाव था। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में शौर्य की नज़र पहली बार सोनी पर पड़ी। किताबों के बीच बैठी सोनी की आंखों में एक अलग सी चमक थी। शौर्य कुछ पल के लिए जैसे समय में ठहर गया। उस दिन के बाद उसकी कविताओं में बस एक ही चेहरा और एक ही नाम बस गया। उसे महसूस होने लगा कि दुनिया की सारी खूबसूरती जैसे उन्हीं आँखों में समा गई हो, और वह हर दिन उन आँखों में खोता चला गया।

पहली मुलाकात के बाद शौर्य अक्सर सोनी को दूर से देखा करता था। धीरे धीरे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रमों के दौरान दोनों की बातें शुरू हुई। सोनी को शौर्य की कविताएं पसंद थी, जबकि शौर्य को सोनी का आत्मविश्वास और सादगी आकर्षित करती थी। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे घंटों कॉलेज कैंटीन में बैठकर बातें करते, सपने साझा करते और एक दूसरे की खुशियों का हिस्सा बनते। शौर्य के लिए हर दिन खास होने लगा। आखिर एक शाम कॉलेज के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह दी। कांपती आवाज़ में उसने बताया कि वह उसे कितना चाहता है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद सोनी मुस्कुराई और उसने भी अपने दिल की बात स्वीकार कर ली। उस पल शौर्य को लगा जैसे कि उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। उसे महसूस हुआ कि उसके दिल की सबसे कीमती धड़कन अब सोनी के पास है, जिसने चुपके से उसका पूरा दिल अपना बना लिया था।

समय बीतता गया और दोनों के बीच दूरी अब सिर्फ शहरों की नहीं थी बल्कि दिलों की भी हो चुकी थी। शौर्य ने कई बार सोनी से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन हालात पहले जैसे नहीं रहे। एक दिन उसे खबर मिली कि सोनी की शादी तय हो गई है। यह सुनकर शौर्य की दुनिया बिखर गई। जिस भविष्य के सपने उसने वर्षों तक संजोए थे वे एक पल में टूट गए। सोनी अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ गई लेकिन शौर्य वहीं ठहर गया। उसने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की मगर हर जगह उसे सोनी की यादें दिखाई देती थी। धीरे धीरे वह अकेलेपन और उदासी के गहरे अंधेरे में डूबने लगा। उसकी कविताएं अब प्रेम नहीं दर्द की कहानी कहती थी। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय भी भर नहीं पाता। शौर्य जी तो रहा था मगर उसके भीतर की खुशियां बहुत पहले दम तोड़ चुकी थी। उसकी रातें खामोश थी और उन खामोशियों में एक अधूरी मोहब्बत का दर्द हमेशा उसके साथ जागता रहता था।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा आज का यह गीतों भरी कहानी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। वादा करते हैं जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। फिल्म घर आया मेरा परदेसी के इस गीत को आवाज़ से सजाया है अनुराधा पोडवाल ने। इसके अल्फाज रविंद्र पीपट की कलम से निकले हैं और संगीति विजय सिंह की है।

अगला गीत सुनिए, फिल्म हरजाई से। इसे अपनी आवाज़ से सजाया है किशोर कुमार ने। गीत के रचनाकार है विट्ठल भाई पटेल, जबकि संगीत संयोजन किया है राहुल देव बर्मन ने।

0: श्रोताओं, वक्त है एक छोटे से अंतराल का। कार्यक्रम में यूं ही बने रहे, मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
3: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं और माइलेज भी बढ़िया है। 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
4: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
0: श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए हमराही फिल्म का गीत। बोल है राजेंद्र कुमार की और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: बिठा के वो चले।
1: अब सुनते हैं फिल्म हसीना मान जाएगी का गाना। इसे स्वरबद्ध किया है मोहम्मद रफ़ी ने, इसके बोल प्रकाश मेहरा ने लिखे हैं और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है लता मंगेशकर व मुकेश की आवाज़ों में हरियाली और रास्ता फिल्म का गीत। इस गीत के कलमकार हैं हसरत जयपुर और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए हाथ की सफाई फिल्म से। इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर व मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने और संगीत संयोजक है कल्याण जी आनंद जी।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपालक अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के 7 पदों को प्रतिनियुक्ति ISTC के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन केवल 11 ग्रुप ए राजपत्रित गैर मंत्रालय नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई एक शर्त को पूरी करनी होगी। मूल विभाग कैडर में सामान पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी या पे मैट्रिक्स के लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की पार्ट A पार्ट B परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग

क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा 2 प्रतियों में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, पिछले 5 वर्षों की अपार ACR प्रतियां भी लगानी होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन उप सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 139 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ रोजगार समाचार समाप्त हुआ। अब सुनिए गौरव गान।

0: बढ़िया है 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी सीएनजी में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम हम दिल्ली से प्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार

0: पार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मूज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
2: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मूज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
3: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए

0: कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We had 26 delegates from
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज एसएसके अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है।

0: प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आईएनएस कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में

0: राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
1: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
1: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
0: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
1: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
0: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल, तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
1: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा।
0: जी जी।
1: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास

0: नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांव से आए, और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव, मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हरेक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं है, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी,
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके

0: ये नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जिससे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
1: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: जी। अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपने कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और मैं
0: जी
2: पैरा एथलीट हूँ, वो शॉटपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
0: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी, 6th से लेकर 12th तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम हैं इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक।
0: जी
2: फिर
0: जी
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था। तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी भेजते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल।

0: था, उसमें से 16 गोल्ड, एक सिल्वर, दो ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
0: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा ये सोची थी। पर मैं बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खास तौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी। तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
1: बिल्कुल
2: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाट एवर आई कैन डू।
1: जी, तो बहुत
2: तो
1: इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टूडे
1: हाँ
2: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन टू
1: सॉल्यूशंस
2: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सोल्यूशंस, एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो एज आई एम अ 10th ग्रेडर दिस ईयर।
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ, एंड इवन टूडे आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आईशी इन साइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सर।
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा, और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया, और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
3: तो ये मौका मिले बहुत कठिन समय रहा जब तक मेरे

0: माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था। बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना। अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसे रह जाऊंगा। बहुत मुश्किल, रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में। फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना, कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया। वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक सेरेब्रल पाल्सी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो तो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको भी, हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर फ्रॉम हिम कि हाँ कैन डू, वाले यार सर्वाइव तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था। मैंने उसे काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, मतलब उस बच्चे को मैंने काफी ना एक हील्स टूडे की, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिल जाता है सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे, मैं चला लेता रोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया। काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो। तो फिर उन्होंने, दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात
0: जी
1: है। हम आपसे और जानना
0: जी
1: चाहेंगे
0: जी
1: कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
0: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है, वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ में सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ कि जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके वो मैं हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक है, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका। तो
0: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जगह कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था, वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो
1: जी
0: जब मैं 3 साल का उम्र का था, तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गांव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबेड़ कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ, तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है। तो
1: बिल्कुल
0: इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया, तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा
1: बिल्कुल
0: उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था, उन्होंने बोला कि मेरे फादर को, उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय
1: जी
0: संगीत का
1: जी
0: जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
1: जी और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
0: आज के जो जनरेशन है वो ऐसे

0: एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
0: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इस इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो एक एआई सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो एआई इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम।

कार्यक्रम में पहले सुनिए हम तुम शबाना फिल्म का गीत अभिषेक नैलवाल और पलाश सेन की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगति है सचिन जिगर की।

अगला गीत सुनिए सुखविंदर सिंह, मरीन निशा और कैरलिसा की स्वर में। ओम शांति ओम फिल्म का गीत, जिसके संगीतकार हैं विशाल शेखर और शब्दकार हैं जावेद अख्तर।

आइए सुनते हैं समीर का लिखा और आनंद मिलिंद की बनाई धुन में, पूर्णिमा व साथियों की आवाज़ों में राजा बाबू फिल्म का गीत।

द फोर्स फिल्म से सुनिए सुनिधि चौहान और विनोद राठौड़ की आवाज़ में ये गीत, जिसके बोल हैं कुंवर जुनेजा के।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म सावरिया से। इस गीत को शब्दों में पिरोया है समीर ने और संगति है मोंटी की।

इस गाने के साथ ही समाप्त होता है हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात के 10:30 हुए हैं। आज की हमारी दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल सवेरे 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6:00 फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:28 हुए हैं। आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।